0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे गीता जी नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मनी, सभी को हमारा नमस्कार। पेश आज की मुख्य खबरें। कोटडो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर में फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश और 7 भवनों की योजना है। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क। परियोजना से 4,000 से ज्यादा कुशल नौकरियां पैदा होने की संभावना है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुंच का अवसर होगा। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जाएगा। 9 जुलाई 1964 को पसलाफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी। हादसे के 62 साल बाद भी शहीद जवानों की यादें जीवित हैं। स्मारक स्थल पर आज आयोजित किया जाएगा वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह। जोनाथन रिशा का शुनकु याम टू का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जनता से सहायता की अपील की है। 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासिडो विला क्षेत्र में ये शव मिला था। MCIT और CCID की टीम मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और विदेश में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं। और अब मौसम संबंधी जानकारियां।
2: Your weather forecast on RM2 Radio Masti।
1: मस्कारिंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे, ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। और दोपहर बाद तक मौसम की समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:40 पर और आज शाम 5:44 पर सूरज ढल जाएगा। ये थी अब तक की खबरें। पूरा समाचार बुलेटिन आप सुबह 6:30 बजे सुन सकेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।

0: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत। चलिए श्रोताओं, 6:04 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब सभी सुनने वालों को। तो चलिए, गुरुवार का दिन है आज, 9 जुलाई 2026 में हम कदम रख चुके हैं और सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी यही कामना है। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र हम तय करने वाले हैं इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। तो चलिए, हमेशा की तरह साथ निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। आपके लाए है मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की ओर से दिव्य दृष्टि कार्यक्रम। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ओम योन्तः प्रविश मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले प्रसंगों से हम सत्संग और कुसंग पर चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा लोग कहते हैं और शास्त्र भी कहता है कि सब प्रकार के कुसंगों में स्त्रियों का संग विशेष हानिकारक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, नततास्य भवेन्मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषितत संगाद्यथा पुंसो यथा तत्संगिस्तसंगतः। दूसरों के संग से उनको वैसा मोह और बंधन नहीं होता है जैसा कि एक युवती स्त्री के संग से तथा उनके संगियों के संग से होता है। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु योगस्य पारम परमा कुरुक्षुः मत सेवया प्रतिलब्धात्मलाभु बदन्ति या निरद्वय द्वारमस्यौ। और कह रहे हैं कि मेरी भगवान की सेवा से जिनको आत्मस्वरूप की उपलब्धि हुई और जो योग की चरम अवस्था पर आरूढ़ होना चाहते हैं, उनको तो कभी भी और युवती का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु पुरुष के लिए और ये तो एकदम नरक का द्वार है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। इन बातों से और पुष्टि हो जाती है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए युवकों का संग हानिकारक है। स्त्री पुरुष के लिए साथ रहने से परस्पर आकर्षण होता है श्रोताओं, उससे चित्तवृत्तियाँ दूषित होती हैं, फिर दोनों का आचरण भ्रष्ट हो जाता है। बात यह है कि जिन किसी भी वस्तु से चित्त का अनित्य भोग की ओर आकर्षण होता है श्रोताओं, वही वस्तु वास्तव में कुसंग है। इसीलिए शास्त्रकारों ने विषय संबंधी बातचीत से भी बचने के लिए चेतावनी दी है, क्योंकि विषयों की बातें होने के कारण विषयों का चिंतन होता है और उस चिंतन द्वारा क्रमशः आसक्ति, कामना, क्रोध, सम्मोह, स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश होकर के मनुष्य

का सर्वनाश हो जाता है। शिव पुराण कहता है कि जनौ विषयिणा शाकम वार्तातः पतति क्षणात् विषयम् प्राहुराचार्याः सितालिप्तेन्द्रिवारुणम्। इसीलिए कहा है कि विषयासक्त मनुष्य के साथ बातचीत करने से मनुष्य तुरंत ही पतित हो जाता है। आचार्यों ने और विषयों को मिश्री से के सनी हुई और मदिरा बताया है, और जिन लोगों का आचरण दूषित होता है श्रोताओं, उनका संग तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि पद्म पुराण कह रहा है कि शंभाद दर्शनात् स्पर्शाद आसनाद भोजनात् किल पापिनाम संगमाच्चैवम किल विषम परिसंचरेत्। कि उन पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करने, उन्हें देखने, उनका स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, एक पंक्ति में भोजन करने तथा उनके संग रहने से आप में और उसके पाप अपने आप आ जाते हैं, आप भी उसी श्रेणी में खड़े हो जाते हैं। इसीलिए श्रोताओं, बड़ी ही सावधानी से मनुष्य को कुसंग से बच करके हमेशा सत्संग करना चाहिए। अब सत्संग श्रोताओं, ये बहुत अद्भुत चीज है। स्थान, अन्न, जल आदि, और इन सब 10 चीज़ें और जब अच्छी होने पर सत्संग का काम देती है। इसका तो हमने आपको पहले भी और इसके विषय में चर्चा की कि जिन वस्तुओं से हमारे अंतःकरण में स्थित दुष्ट विचारों का नाश होकर के सद विचारों की उत्पत्ति हो और चित्त वृत्ति की गति भगवान की ओर होने लगे, वही विषय स्वल्प स्वरूप परमात्मा के साथ हमारा संबंध करने वाला होने के कारण वो सत है, और उसी का नाम सत्संग है। इसीलिए जहाँ तक बन सके देखने, सुनने, चर्चा करने, खाने पीने, पढ़ने लिखने विषय तथा आजीविका का कार्य और वातावरण एवं उपासना पद्धति सभी ऐसे होने चाहिए जो हमारे चरित्र में और सुधार लाएं, उत्थान में सहायता करने वाली हों। जैसे कुसंग से बुद्धि राजसी और तामसी हो जाती है, वैसे ही सत्संग से बुद्धि क्रमशः तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके सात्विकी बन जाती है। सात्विकी बुद्धि यथार्थ निर्णय करती है श्रोताओं, और उसके प्रभाव से मनुष्य अपने वास्तविक कर्तव्य को पहचान करके उस पर आरूढ़ हो जाता है। कहा है, भगवद गीता कहती है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कि मनुष्य तमसावृत बाहरी आँखें सत्संग के प्रकाश से ही खुलती है श्रोताओ। मनुष्य यदि आँखें और अच्छे प्रकार से खोलना चाहे तो वो सत्संग में ही खुल सकता है, और सत्संग के बल से ही वो उठ करके उत्थान की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर सकता है। अब देखिए श्रोताओं कि सत्संग से क्या होता है। नंबर एक, संत और भक्त के आचरण प्रिय मालूम होते हैं और संत के आचरण एवं भक्ति की प्राप्ति के लिए मन मचल उठता है। नंबर दो, भगवत चर्चा, भगवत गुणानाम कीर्तन, भगवत गुणानाम श्रवण और भगवत चिंतन में सतत मन लग जाता है। और नंबर तीन, भगवान के गुण, प्रभाव, रहस्य और प्रेम की बातें सुनने से तथा भजन करने से विषया शक्ति और भोग कामना का नाश होकर के भगवान में अनुरक्ति और भगवत प्राप्ति की कामना होती है। भोगों और नंबर चार श्रोताओं, भोगों से सच्चा वैराग्य होता है जिससे चित्त प्रमाद शून्य, है ना, प्रमाद का मतलब आलस्य है ना, प्रमाद शून्य, शांत, प्रसन्न और ध्यानमय बन जाता है। श्रोताओं, पांचवा जो है
और कहा कि अंतःकरण में स्थित जो कामादि समस्त शत्रु हैं, काम क्रोध

0: लोभ मोह इनका नाश हो करके निर्भयता आदि दैवी संपदा के 26 गुणों की उत्पत्ति और वृद्धि हो जाती है श्रोताओं। और छठवां क्या होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता, राग द्वेष ममता अहंकार और अज्ञान का नाश होता है। सातवां, स्वाभाविक ही तन मन धन से संसार के जीवों की सेवा और करने की इच्छा मन में बन जाती है। और आठवां, सर्वत्र सब प्राणियों में सदा सर्वदा और सर्वथा भगवत दर्शन होने लगते हैं। और नवा, भगवान का तत्वज्ञान हो करके सनातन दिव्य आनंद और परम शांति तथा दिव्य प्रेम और दिव्य परम प्रेम की प्राप्ति होती है। और दसवा, परम मधुर और परम आत्मीय अनंत सौंदर्य माधुर्य के सागर भगवान की परम सेवा के सामने मुक्ति भी तुच्छ प्रतीत होने लगती है। स्वयं भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं ना, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायतस्त्यापत्यागो नेष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः यावद् वरुन्धये सत्संगाः सर्वसंगा पहो हि माम। भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, दूसरे समस्त संगों का निवारण करने वाले मेरे लीला गुण का प्रकाश करने वाले सत्संग के द्वारा मैं जैसा वश में होता हूँ, वैसा तो योग ज्ञान धर्म स्वाध्याय तप त्याग इष्टापूर्ति दक्षिणा व्रत यज्ञ वेद तीर्थ यम नियम आदि किसी से नहीं होता है। सत्संग से स्वयं भगवान वश में हो जाते हैं श्रोता, उससे बढ़कर के और कौन सी वस्तु या साधन हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जिन जिन महात्मा पुरुषों को से प्राप्त होता है, उन्हीं को प्राप्त कर लेने की चेष्टा मनुष्य को अपने जीवन की बाजी लगा करके भी कर देना चाहिए। ये चेष्टा ही साधना है श्रोताओं। वास्तविक संत या महात्मा पुरुष मिल जाएं और हमें और हम उन्हें पहचान लें, फिर तो मानव जीवन की सर्वोपरि सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता है। परंतु जब तक वैसे पुरुष न मिले, तब तक श्रद्धापूर्वक अन्यान्य सद्वस्तुओं का, सत्शास्त्रों का, सात्विक वृत्ति वाले श्रेयस्कर साधकों का संग निरंतर करते रहना चाहिए। श्रोताओं, आज यहीं पर और समय समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेके पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

6:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले क्लेफों के वाकवा के रहने वाले निवासों को, जिनमें है क्लेफो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इंडिपेंडेंस एवेन्यू, इव ब्रेलू ब्रेलू एवेन्यू, ब्राउन सेका एवेन्यू, सिमेट्री रोड, André Martin Avenue, Mahatkabir Temple Road, Sobhi Lane, Arya Mandir Lane और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच, चपिप के रहने वाले निवासियों को जिनमें है लीज स्ट्रीट के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, कोमर्सन स्ट्रीट, लाक्रॉय स्ट्रीट, सर विक्टर हुगो स्ट्रीट, बाइजाक स्ट्रीट, मोरेल स्ट्रीट, लालमाची स्ट्रीट, डाले स्ट्रीट, मार्सेल मार्सेनेविल, मैक्सिम बुल स्ट्रीट, इंपास हेनरी, इंपास मेक्रो, डुक्रे स्ट्रीट, डुपेरे स्ट्रीट और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, साथ में है हाईलैंड्स के रहने वाले निवासियों को जिनमें है मौसलमा MTMD, मौसलमा वालडवाज, मौसलमा ब्लूप्रिंट, Marcelma Parmesa, Marcelma Omnicane, Marcelma VRS, Belterre, NHDC Highlands, Cité 50, Bassin Road, Boundary Road, Railway Road, Dispensary Road, Nades Road, Fire Road, Copman Road, Toko Road के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, Oadali Road के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि 9 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर है मौसलमा वियोस बेल्टेयर के रहने वाले निवासियों को रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, क्लेफों वाकवा के रहने वाले निवासियों को जिनमें है क्लेफों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इंडिपेंडेंस एवेन्यू, इव ब्रेलू ब्रेलू, ब्राम सेका एवेन्यू, सिमेट्री रोड, André Martin, महत्कबीर टेम्पल रोड, सोभी लेन, आर्य मंदिर लेन के रहने वाले निवासियों को रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच, ग्लेन पार्क के रहने वाले निवासियों को जिनमें है ग्लेन पार्क के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को और एवेन्यू डे वेगू के रहने वाले निवासियों को शनिवार 11 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 12 बजे के बीच, ओरिएटा के रहने वाले निवासियों को जिनमें है ओरिएटा ब्रांच रोड के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, डेल्फिस लेन, कोने कालडवेल और राजाबाली लेन के रहने वाले निवासियों को शनिवार 11 जुलाई 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच, और साथ में है मौसलमा इरेमिया कोडो और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 11 बजे के बीच, और अंत में है बेल्टेयर विलाज के रहने वाले निवासियों को
सूचित किया जाता है कि बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी रविवार 12 जुलाई 2026 को दिन के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच। तो इन सभी जगहों पे ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा को हम जारी रख रहे हैं चंद भावगीत सुबह के 6:30 बजे तक।

तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है और आपके चन्न भाव गीत लाए हैं। वैसे ज़िंदगी हर पल बदलती है, इसलिए हर पल को अपना बना लो। तो चलिए, कुछ ही घड़ी में 6:30 बजने वाले हैं और आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन सकेंगे। और समाचारों के उस पार हम वापस मिल रहे हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम को लेकर आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं।

0: आज का पूरा समाचार बुलेटिन। सबसे पहले सुर्खियां। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर फैली ये परियोजना 42 मिलियन यूरो की है, जिसमें 7 भवनों के निर्माण की योजना है। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुँच का अवसर होगा। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जा रहा है। 9 जुलाई 1964 को पसलाफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी। स्मारक स्थल पर आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाएगा। जोनाथन रिशा काशुनकु याम टू का शव मिलने के मामले में पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासेडो विलाओ क्षेत्र में ये शव मिला था। जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और अब समाचार विस्तार से। कल शाम कोड्डो में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये टेक्नोपार्क 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 42 मिलियन यूरो के निवेश का प्रावधान है। कुल 7 भवन बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 पहले ही संचालित हो चुके हैं। आवा टेक्नोपार्क उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। इस परियोजना में 4,000 से ज़्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता है। ये ऐसे कुशल रोजगार होंगे जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता आधारित उद्योग से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार युवा मॉरिशस वासियों को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर प्रयोगशालाओं, स्मार्ट उत्पादन इकाइयों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर मिलने चाहिए। आवा टेक्नोपार्क को नई अर्थव्यवस्था की ओर खुलने वाले महत्वपूर्ण द्वारों में से एक माना जा रहा है। ये बजट 2026-2027 की उस दृष्टि के अनुरूप है, जिसमें देश की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Ces emplois ne sont pas seulement des emplois, ce sont des emplois qualifiés, des emplois d'avenir, des emplois dans une industrie qui associe la science, la technologie et la qualité. Ce sont les emplois que nous voulons pour la jeunesse mauritienne. Une jeunesse qui ne doit pas être condamnée à choisir entre

0: Esther Maurice est réussir dans le monde. Notre devoir est de faire de sorte qu'elle puisse le faire les deux, c'est-à-dire rester à Maurice et participer au monde. C'est cela la vraie ambition. L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels. Il se construira aussi dans les laboratoires, dans les centres de conception, les unités de production intelligente, la qualité réglementaire, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les industries exportatrices. Notre jeunesse ne demande pas la charité. Elle demande des plateformes, elle demande des opportunités, elle demande un pays qui lui ouvre ses portes. Ava Technopark est l'une de ces portes.
1: आवा टेक्नोपार्क में विशेष रूप से बलून कैथेटर्स का निर्माण किया जाता है। ये छोटे चिकित्सा उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डॉक्टर विशेष उपचार प्रक्रियाओं के दौरान करते हैं, जैसे संकरी या धमनियों के बंद होने के इलाज में। प्रधानमंत्री ने कोतदो टेक्नोपोल के लिए सरकार की दृष्टि का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि इस क्षेत्र को इनोवेशन टेक्नोलॉजी और नई औद्योगिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उनको सुनते हैं।
0: J'ai dit dans le budget 26-27, le gouvernement a défini une orientation stratégique très claire. Nous construisons une future-ready economy, une économie plus innovante, une économie prête pour l'avenir, une économie qui innove, une économie qui produit, une économie qui exporte. Une économie qui utilise, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle pour améliorer sa compétitivité. Une économie où les micros, les petites et moyennes entreprises peuvent évoluer avec moins de contraintes. Vous me disiez tout à l'heure que avant vous ne pouviez pas vendre vos cafetières ici à Maurice. Pourquoi? On les fabrique à Maurice et on importe des autres pays. Heureusement que le ministre a pu corriger cela, le ministre Béchou. Une économie capable de s'adapter au choc et aux mutations du monde. Dans cette perspective, les travaux pour le développement d'une zone économique spéciale axée sur la technologie à Côte d'Or ont déjà démarré. Le centre de Côte d'Or offrira un écosystème tourné vers l'avenir, aux industries numériques et aux entreprises axées sur la technologie. De plus, la participation de Maurice à l'initiative America India Connect de Google renforcera davantage la connectivité numérique.
1: शी ट्रेड मॉरिशस हब पहल के तहत कल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर अफ्रीकी बाजारों में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए AFCFTA के मौकों को खोलना विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। दो दिनों तक इसमें ठेकेदार, व्यापार विशेषज्ञ और नीति बनाने वाले अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया से मिलने वाले मौकों पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक ऐसा समझौता है जो 54 अफ्रीकी देशों को एक साथ लाता है और इसका मकसद 1.4 बिलियन से ज़्यादा उपभोक्ताओं वाला एक एकीकृत बाजार बनाना है। विदेश मंत्री धनंजय रामफल के लिए AFCFTA की सबसे खास बात व्यापार में महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित एक प्रोटोकॉल है, एक ऐसी विशेषता जिसे किसी व्यापार समझौते के लिए पहली बार शामिल किया गया है। Unko sunte hain vivran Sumera Paralika.
2: Tout le temps, moi, j'ai dit, nous si, ban plusieurs accords, mais nous pas vraiment venti, ça man l'accord là.
3: हमने कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं जिनके बारे में ज्यादा बताते नहीं हैं। इसलिए साझेदार और ठेकेदार इनके बारे में कम जानते हैं या नहीं जान पाते हैं। आज मेरे मंत्रालय ने इस कार्यशाला का आयोजन किया ताकि महिला ठेकेदार ज्यादातर मौकों का फायदा उठा सकें और अपने कारोबार में समृद्धि पा सकें। ये निराले समझौतों में से एक हैं जिनमें शामिल प्रोटोकॉल खास रूप से महिलाओं के लिए है।
1: मंत्री धनंजय रामफल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। उनसे कैबिनेट में संभावित फेरबदल के बारे में भी पूछा गया। हालांकि वित्त मंत्रालय संभालने के संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्री ने फिर कहा कि सरकार के गठन से जुड़ा कोई भी फैसला प्रधानमंत्री ही करते हैं। उनको सुनते हैं।
2: मनी
1: लॉन्डरिंग के आरोपी चीनी बिजनेसमैन लिहा

0: अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे शुरुआती आरोप को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। वे कल पोर्टलिस की अदालत में पेश हुए। लिहाई को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था, जब 2014 में हांगकांग में उनके पर्सनल अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके वकील मनी लॉन्ड्रिंग के शुरुआती आरोप की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी सुमेर अकबर अली के साथ।
1: उद्योगपति के वकील का कहना है कि जिस जुर्म की बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाया गया उसकी साफ पहचान नहीं की गई। उनका ये भी कहना है कि पेश किए गए सबूत उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई भी शक पैदा नहीं करते। प्रतिरक्षा का ये भी इल्ज़ाम है कि प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया गया। उनके मुताबिक जिस वाकये का जिक्र है वो नवम्बर 2014 का है, जबकि अस्थायी आरोप एक साल बाद लगाया गया। प्रतिरक्षा के अनुसार पिछले 8 महीनों में FCC की जाँच में कोई खास तरक्की नहीं हुई है। लिहाई जो यीहाई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं, पाइस मौत सिटी परियोजना के प्रमोटर हैं। ये परियोजना मंगल के दिन राष्ट्रीय सभा में पूछे गए एक सवाल का भी मरकजी मौजू रहा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने दुमैनली पाइस मौत सिटी परियोजना में सामने आई अनियमितताओं और यीहाई के खिलाफ उठाए गए कदम की तफसील भी पेश की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम के मुताबिक ये मामला मई 2026 में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन को भेजा गया था। इसके अलावा संबंधित पक्षों की तरफ से एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई।
0: स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये एक ऐसा घाव है जो आज तक नहीं भरा है। 62 साल पहले 9 जुलाई 1964 को पुस्लाफायत में एक साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एक भयानक हादसे में बदल गया था, जिसमें समुद्र की ऊंची लहरों ने 7 युवा सैनिकों की जान ले ली थी। आज सुबह स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और उनके बलिदान को याद किया जाएगा। 11 जून 2026 को शासे डुविलाओ मिडलैंड्स में जोनाथन रिशाओ काशुन कुयाम 2 का शव मिलने के बाद पुलिस जनता से अपील कर रही है। CCID की मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी रखी हुई है। जांच को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। आम जनता सेंट्रल CID से 2080868 या 5499-8477 पर संपर्क रख सकती हैं। एयर मॉरिशस ने पुष्टि की है कि कल मॉरिशस से रेयून जाने वाली उड़ान MK 238 में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग यात्री की विमान में चढ़ने के दौरान तबीयत अचानक खराब हो गई। विमान के क्रू सदस्यों ने तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया और हवाई अड्डे के डॉक्टर के विमान में पहुंचने तक हर संभव सहायता दी। जांच के बाद यात्री को विमान से उतारकर आगे के उपचार के लिए एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, लेकिन सभी प्रयासों के बावजूद यात्री का निधन हो गया। एयर मॉरिशस ने दिवंगत यात्री के परिवार, खासकर उनके साथ यात्रा कर रहे रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। एयर मॉरिशस ने अपने क्रू और हवाई अड्डे की चिकित्सा टीम को उनकी तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। और विदेश खबरों में, अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये हमले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर ईरानी हमलों को रोकने के लिए किए गए हैं। ईरान पर हमलों का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लिया गया है। और पाकिस्तान के एक बोइंग कार्गो विमान का मलबा मिल गया है। 27 साल पुराना ये विमान मंगलवार को शारजा से कराची आने के दौरान अरब सागर के ऊपर रडार से गायब हो गया था। विमान में सवार 5 सदस्य चालक दल की तलाश जारी है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजा से कराची आ रहे विमान ने नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी की सूचना दी थी। और अब मौसम संबंधी जानकारियां। मस्कारेंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवाएं चल रही हैं। आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, पूर्व और ऊंचे इलाकों पर बारिश होगी। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा, अधिकतम तापमान

ऊंचे इलाकों पर 18 से 21 और साहिली इलाकों पर 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाकों पर हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 14 से 17 और साहिली इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। लगुनों के परे समुद्र खराब रहेगा, 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है और दोपहर बाद को समुद्र की स्थिति में सुधार आने लगेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:46 पर और आज शाम 5:44 पर सूरज ढल जाएगा।

0: बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क का आधिकारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर में फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश, 7 भवनों की योजना शामिल है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खोलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक को आज याद किया जा रहा है। 9 जुलाई 1964 को पोस्ट लफायत में प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान समुद्र में डूबने से 7 युवा सैनिकों की मौत हुई थी। हादसे के 62 साल बाद भी शहीद जवानों की यादें जीवित हैं। और जोनाटो किशोर काशुन कुयाम टू का शव मिलने के बाद पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। 11 जून 2026 को मिडलैंड्स के शासेडू विलो क्षेत्र में शव मिला था। NCERT और CCID की टीम मौत की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। जांच में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने पर 5,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजन का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: महात्मा गांधी रोड कॉटेज में 91 साल की 91-year-old की श्रीमती प्रियम वडा ओगी पैदाइश नाम महादेव और जो प्रियम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे ऋषि कुमार ओगी के घर महात्मा गांधी रोड कॉटेज से उठाकर काहो अकास्या कॉटेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2:30 PM। सोशल वेलफेयर रोड श्रीमे घोनिये में 58 साल की 58-year-old की श्रीमती दमयंती भुकन पैदाइश नाम रामखिलावन और जो फी से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पति राज बुकन के घर सोशल वेलफेयर रोड श्रीमे घोनिये से उठाकर कोंगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 56 रॉयल रोड लेस्कालिये में 91 साल की 91-year-old की श्रीमती पद्मावती खोखा पैदाइश नाम रामधयान और जो देवंती से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे आदिल गुरा के घर नंबर 56 रॉयल रोड लेस्कालिये से उठाकर बासेकागांग लेस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 3 PM। बोपलों रोड कालबास में 68 साल के 68-year-old के श्री नवीन चंद्र जीवन जो नवीन से ज़्यादा जाने जाते थे और लेडी राम गुलाम स्कूल में पूर्व अटेंडेंट थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उनकी पत्नी ललिता जीवन के घर बोपलों रोड कालबास से उठाई जाएगी। टागो लेन कालबास में 91 साल की 91-year-old की श्रीमती धनवंती पलाराम पैदाइश नाम कुलीचरण और जो धन

से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर टागोलेन कालबास से उठाकर बामाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। करिम्बोकस लेन लेस्कालिये रोड प्लेन मायों में 50 साल के 50-year-old के जनाब मोहम्मद समाद खां करिम्बोकस, जो समाद से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके घर करिम्बोकस लेन लेस्कालिये रोड प्लेन मायों से निकालकर प्लेन मायों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। कालीमाई रोड रिबिया जुरान पा में 19 साल के 19-year-old की श्री अजागेन रंगास्वामी, जो अविसेन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पिता सीवेन रंगास्वामी के घर कालीमाई रोड रिबिया जुरान पा से उठाकर वेंटिलास्कोव का कब्रस्तान ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 177 पायुत में 66 साल के 66-year-old के श्री तिलक संपत, जो विष्णु से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 177 पायुत से उठाकर अली ब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। पेलखें सेबास्तोपोल में 43 साल के 43-year-old के श्री ओमियादेव इसेबिया, जो रितु से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी पूनम इसेबिया के घर पेलखें सेबास्तोपोल से उठाकर लेसुए सेबास्तोपोल का कब्रस्तान ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। सैनाम रोड सुरीनाम में 71 साल के 71-year-old की श्री जयराम गोविंद, जो राम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी बेटी समीला बाई गोविंद के घर सैनाम रोड सुरीनाम से उठाकर ग्रांबोआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। क्लोजेल रोड फिनिक्स में 33 साल के 33-year-old की श्री त्रिस्ना हरक, जो जेफ से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पिता सुंदर हरक के घर क्लोजेल रोड फिनिक्स से उठाकर सुल्फेरिनो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। कतान्या इटली में 60 साल के 60-year-old के श्री विजय बहादुर, जो विजय से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहले रामदानी रोड प्लेंडी पापाई रहते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनका अंतिम संस्कार कतान्या इटली में आज दोपहर बाद के 3 बजे किया जाएगा। पायों के रोड मुसलमान सेंट अंतवान गुडलैंड्स में 77 साल की 77-year-old की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाश नाम जोधवा और जो इंद्रानी से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी बाद में उनके बेटे विमल राजकुमार के घर पायों के रोड मुसलमान सेंट अंतवान गुडलैंड से उठाई जाएगी। रिजर्वा रोड हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 81 साल के 81-year-old की श्री अनिरुद्ध गंगा प्रसाद, जो प्रेम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके घर गजावा रोड हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों का अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल आज से शुरू। केवल 8 टीमें बची हैं, फ्रांस, मोरक्को, स्पेन, बेल्जियम, इंग्लैंड, नॉर्वे, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड। पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस और मोरक्को के बीच रात्रि के 12 बजे किक ऑफ है बोस्टन में। टूर्नामेंट की शुरुआत से अभी तक फ्रांस फेवरेट है टाइटल जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में लगातार 5 मैच जीत चुके हैं ले ब्लू। पिछले राउंड में फिजिकल पराग्वे को हराने में कठिनाई हुई थी। किलियान एम्बापे ने पेनाल्टी पर टीम को क्वालिफाई किया था। एम्बापे अब तक 7 गोल स्कोर कर चुका है, मेसी से केवल 1 गोल पीछे। गोल्डन बूट का एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। इस टीम में डेम्बेले, ओलीजे, बाकोला, दुए जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकते हैं। इस मैच में ओगेलिया चुआमेनी ट्रेनिंग कर पाया इस मैच के लिए, पर फुल फिट है खेलने के लिए ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। मोरक्को द अटलास लायंस किसी से नहीं डरते, ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड को रोका, नॉकआउट राउंड में नेदरलैंड्स और कनाडा को बाहर किया। इनका गोल्डन एरा चल रहा है, पिछले 34 मैचों का विनिंग स्ट्रीक चल रहा है। इनका एम्ब्लेमैटिक कप्तान अशरफ हकीमी का काम होगा फ्रांस के कप्तान एम्बापे को रोकना, पर हकीमी की आदत है राइट विंग में आगे जाना। ऐसा करेगा तो एम्बापे के लिए अटैकिंग स्पेस खुलेगा। मोरक्को का स्ट्राइकर इस्माइल साइबागी हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण नहीं खेल पाएगा। इस टीम में गोलकीपर बुनू को भी उसकी भी अहम भूमिका है, साथ में माजाउई, जाज, उनाही, अल्खनूस और रहीमी जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं मोरक्को में। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट और सेमीफाइनलिस्ट के बीच आमना सामना। फुटबॉल एनालिस्ट कहते हैं टाइट टैक्टिकल फर्स्ट हाफ होगा जैसे 2022 में हुआ था, लेकिन फ्रांस का एलीट स्क्वाड डेप्थ और क्लिनिकल काउंटर अटैकिंग पावर मोरक्को के लिए घातक होंगे। ऊपर से साइबागी नहीं है मोरक्को में, ऐसे में फ्रांस के चांसेस ज्यादा है। वर्ल्ड कप 2026 का पहला क्वार्टर फाइनल आज फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फिर कल 11 बजे स्पेन वर्सेस बेल्जियम, संडे सुबह 1 बजे इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे और सोमवार को मंडे मॉर्निंग 5 बजे अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड। मतलब इस वीकेंड के बाद 4 सेमीफाइनलिस्ट सामने आएंगे और 4 वापस घर। ट्रांसफर न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी से आंद्रे सांटोस को साइन करने के लिए तैयार है। ब्राजील का इंटरनेशनल खिलाड़ी आंद्रे सांटोस चेल्सी में आया था वास्को दा गामा टीम से लोन पर, नॉटिंघम फॉरेस्ट और स्ट्रासबर्ग में खेल पाया। पिछले सीजन सांटोस चेल्सी के लिए 3 गोल स्कोर कर पाया था और 4 असिस्ट। मैनचेस्टर यूनाइटेड अटलांटा से मिडफील्डर एडिसन को भी साइन करने जा रहा है, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिडफील्ड में ब्राजील का सांबा होगा। चेल्सी केवल बेचता नहीं खरीदता भी है। जोवानी क्वेंद्रा 40 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर चेल्सी में आ रहा है स्पोर्टिंग से। 8 साल का कंट्रैक्ट होगा इस नए खिलाड़ी के लिए। टेनिस। विंबलडन ओपन में लोकल हीरो बन रहा है ऑथियो फेरी। ब्रिटेन का वाइल्ड कार्ड क्वालिफायर फेरी सेमीफाइनल में पहुंचा वर्ल्ड नंबर 10 फ्लावियो कोबोली को हराकर। फेरी वर्ल्ड नंबर 114 था, अब तक किसी भी टेनिस टूर्नामेंट में अनजान था, पर कल उसने फ्रेंच ओपन के फाइनलिस्ट कोबोली को हराया 6-4, 7-6, 6-0 से। सेमीफाइनल में फेरी का सामना अलेक्जेंडर वेरेव से होगा। वेरेव ने टेलर फ्रिट्स को हराया। सो पहला सेमीफाइनल नोवाक

Djokovic versus Yannick Sinner or Dusra, British wildcard Arthur Ferry or Alexander Zverev के बीच. लड़कियों में कोच टुक सेमीफाइनल में पहुंची, पाउलिनी को हराकर नोस्कोवा भी जीत पाई मेर्टेंस के खिलाफ. आज सेमीफाइनल मुचोवा वर्सेस कोको गोफ और कोस्टिक वर्सेस नोस्कोवा. साइकिलिंग टूर दे फ्रांस के पांचवें चरण स्टेज 5 में नेदरलैंड्स के ओलाव कुज की जीत हुई.

0: चलिए श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:05 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले अलबियों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है मौसलमा गाफरे, मौसलमा बियाजिगाज, मौसलमा बेलव्यू, एवेन्यू उरागन, एवेन्यू विक्टोरी, Avenue Saint-Gérand, Avenue Bounty, Avenue Albatros, Avenue Dahlia, Avenue Tulip, Avenue Frangipane, Avenue Rose, Avenue Aurier. और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को गुरुवार 9 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 9:30 बजे के बीच, फिर सपहर के 3 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और साथ में है क्यूपिप के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है लीज स्ट्रीट के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, कॉमर्सन स्ट्रीट, लाक्रॉय स्ट्रीट, विक्टर हुगो स्ट्रीट, बायजाक स्ट्रीट, मोरेल स्ट्रीट, लामालेची स्ट्रीट, डाले स्ट्रीट, मार्सेल मोसनेविल, मैक्सिम बुल स्ट्रीट, इंपास हेनरी, इंपास मेग्रो, डुक्रे स्ट्रीट, डुपेरे स्ट्रीट और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 12 जुलाई 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

0: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। आप सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक अभिवादन है इस हिंदुस्तानी सभा में। वैसे एक बहुत ही प्यारा सफ़र है आज का दिन, जो है हम साथ मिलकर बिताएंगे समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। गुरुवार 9 जुलाई 2026 आज का दिन आपके लिए आपके जीवन में नई आशाएं, नई ऊर्जा लेकर आए। एक नया दिन ईश्वर का अनमोल उपहार है, इसे अच्छे कर्मों के साथ स्वीकार कीजिए। तो चलिए श्रोताओ, हम आपके लाए हैं एक से बढ़कर एक प्रोग्राम इस हिंदुस्तानी सभा में, और शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ। आइए डॉक्टर जमैन जी की प्रस्तुति में सुनते हैं चिंतन।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: बुढ़ापा रूप को, आशा धैर्य को, क्रोध श्री को, अनार्य सेवा शील को, काम लज्जा को और अभिमान, इन सब को हरता है।

तो चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चले हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम आपके लिए चंद पुराने गाने, फिर इसके बाद 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे, समाचारों के उस पार चंद डुएट्स गाने, और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में साथ में एक भोजपुरी गीत आपके नाम, 9 बजे फिर से समाचार पढ़े जाएंगे, और इसके बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे, और इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में 11 बजे समाचार पढ़े जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में 11:03 पर दिन के 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरीश शानिनी के साथ, आर से लेकर आएगी तमिल भाषा में कार्यक्रम दिन के 12:30 बजे, 1:30 बजे विविधा कार्यक्रम मराठी भाषा में आप प्रीति के साथ सुन पाएंगे, दोपहर के 2 बजे मंडारिन प्रोग्राम जो है जिनके साथ आप सुन सकेंगे, 2:30 बजे रंगारंग कार्यक्रम, ये कार्यक्रम गुजराती भाषा में अमिता के साथ, 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में, सपहर के 3 बजे के समाचारों के बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा, शाम के 4 बजे सुमिता लेकर आएगी भक्ति सागर कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा।

0: एक कार्यक्रम जो है आप डॉक्टर मोहबीर जी की प्रस्तुति में सुन पाएंगे। शाम के 5 बजे सुमिता के साथ सदाबहार गाने, 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद चंद फिल्मी गाने, 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम डाविद के साथ, 7 बजे तमिल भाषा में कार्यक्रम पुवाना के साथ, वर्षा लेकर आएगी तेलुगु भाषा में कार्यक्रम 7:30 बजे, 7:50 पर गीत गंगा ये कार्यक्रम होने वाला है 7:50 पर, और ये कार्यक्रम जो है शीरज के साथ सुन पाएंगे। देवीना लेकर आएगी भजले प्रभु का नाम 8:10 पर, मैं फिलेश अब ये कार्यक्रम समीर के साथ 8:40 पर, रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का किरण के साथ, सुनहरे पल इस चंद पुराने गाने रात के 11 बजे गिनिशा के साथ, और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आप ये चंद प्यारे प्यारे गीत।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियां,
2: झलकियां,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे श्रोताओ, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर अंदाज है। यह बड़ी बड़ी सफलताओं में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छिपी होती है। अपनों की मुस्कान में, किसी की मदद करने में, सुबह की ताज़ी हवा में और ईश्वर का धन्यवाद करने में। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, ये है सुबह का नज़राना कार्यक्रम आपकी सेवा में।

तो श्रोताओ, आज अपने चेहरे पर मुस्कान ज़रूर सजाइए, दिल में उम्मीद जगाइए और हर पल को पूरे मन से जीने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपकी एक मुस्कान किसी और के जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन जाए।

वैसे श्रोताओं, सच्ची प्रसन्नता धन दौलत से नहीं बल्कि संतोष से है, प्रेम से है, विश्वास और अपनापन से मिलती है। यह है सुबह का नजाना रेडियो मॉरिशस पे मीडियम वेव 19 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। स्टूडियो की घड़ी में 7:30 बज चुके हैं। तो चलिए चंद प्यारे प्यारे गीत, चंद सदाबहार गीत जो है आपके नाम हम कर रहे हैं। अगली भेंट में बहुत ही खूबसूरत सा गीत है महेंद्र कपूर की आवाज़ में।

0: वैसे श्रोताओं, पुराने गाने आज भी उतने ही ताज़ा लगते हैं जितने पहले लगते थे। पुराने गानों की मिठास हमेशा दिलों में बनी रहती है ना। तो चलिए खूबसूरत गीतों का ये कारवा, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। सुबह का नज़ाना कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे, चलिए आप हमारे साथ जुड़े हैं सुबह 6 बजे से। अभी तक आप हमें याद कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, रोमांटिक गीत है, इसे आप ज़रूर पसंद करने वाले हैं और इसे आप ज़रूर गाए, गुनगुनाए हमारे साथ।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं,
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

चाहे नई प्रेम कहानी हो या पुरानी यादें, ये गाने हर दिल को खास महसूस कराते हैं। प्यार के हर एहसास के लिए एक अगला खूबसूरत प्यारा सा गीत आपके नाम।

0: चलिए श्रोताओं, चलने का नाम है जिंदगी। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तहे दिल से आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। तो चलिए, चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में बुलंद है इस कार्यक्रम में। ये है सुबह का नजाना कार्यक्रम, आपके नाम हम सजा रहे हैं। चंद प्यारे प्यारे गीत आपकी सेवा में।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

श्रोताओं, हम आपको इशारा कर दें कि कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं और आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे समाचारों के उस पार। चंदू एस गाने आपके नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सबके के नमस्ते। फजर के 8 बजल बा भोजपुरी में समाचार सुना जा। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क के औपचारिक उद्घाटन काल प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बगल से करल गल। 54,000 वर्ग मीटर पर फैलल ई परियोजना में 42 मिलियन यूरो के निवेश करल जाए और 7 को भवन के निर्माण के योजना बा। उच्च सटीकता होला चिकित्सा उपकरण के निर्माण में विशेषज्ञता रखेला आवा टेक्नोपार्क। ई परियोजना से 4,000 से जस्ती नौकरी पैदा हुई के संभावना बा। मॉरिशस के महिला ठेकेदार लोग खातिर अफ्रीकी बाजार में नवा अवसर के द्वार खुले के उम्मीद बा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड आर UNDP बगल से AFCFTA अवसर पर दो दिन के कार्यशाला के आयोजन करल जाता। 54 अफ्रीकी देश के जोड़े होला AFCFTA। 1.4 बिलियन से जस्ती उपभोक्ता होला बड़ा बाजार ले पहुँच के अवसर रही। विदेश मंत्री धनंजय राम फुलबुल्लन AFCFTA में महिला और युवा लोग खातिर समर्पित व्यापार प्रोटोकॉल एगो ऐतिहासिक पहल है। मंत्री धनंजय रामपल ई भी बोलन कि ई प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार है। उनकर से कैबिनेट में संभावित फेरबदल के बारे में भी पूछल गल रहल। हालांकि वित्त मंत्रालय संभाले के संभावित उम्मीदवार के तौर पर उनकर नाम लेवल जाता, पर विदेश मंत्री एक खला फिर से बोलन कि सरकार के गठन से जुड़ल कोनो भी फैसला प्रधानमंत्री ही करेलन। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये एगो ऐसा घाव है जो आज ले नहीं भरल बा। 62 बरिस पहले 9 जुलाई 1964 के पुसलाफायत में एगो साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एगो भयानक हादसा में बदल गल रहा, जिकर में समुन्दर में ऊंचा लहर में 7 नौजवान सैनिक के जान चल गल रहा। आज भजिर के स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में काम के दौरान शहीद हुई होला इस सब नौजवान लोग के श्रद्धांजलि अर्पित करल जाता और उन लोग के बलिदान के याद करल जाता। यह मॉरिशस ई पुष्टि कर ले बाकी काल मॉरिशस से रेनियन टापू जाए होला उड़ान MK 238 में यात्रा करे होला एगो बुजुर्ग यात्री के विमान में चढ़े बखत तबीयत अचानक खराब हो गल। विमान के क्रू सदस्य लोग हाल ही से प्राथमिक उपचार दिलन सा आर हवाई अड्डा के डॉक्टर के विमान में पहुँचे ले हर संभव मदद करलन सा। जांच के बाद यात्री के विमान से उतार के जस्ती उपचार खातिर एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाल गल, पर सब कोशिश के बावजूद यात्री के मृत्यु हो गल। मॉरिशस दिवंगत यात्री के परिवार खासकर ओकर संगे यात्रा करे होला रिश्तेदार लोग के प्रति अपन गहरा संवेदना व्यक्त करता। मॉरिशस अपन क्रू आर हवाई अड्डा के चिकित्सा टीम के उ लोग के तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवा खातिर भी धन्यवाद देवता। और दूसरे देश के खबर में अमेरिका ईरान पर नवा हवाई हमला करता। एक बाद आज फजर के कुवैत बहरीन और कतर में ईरानी हमला के चेतावनी दे होला मिसाइल अलर्ट सायरन बजे लगल। एकर से पहले काल अमेरिका ईरान पर हमला कर ले रहल आर पलटवार करके ईरान बहरीन और कुवैत पर मिसाइल दगले रहल। कुवैती सेना बोले बा कि वो ईरान से आए होला ड्रोन पर और मिसाइल के नष्ट करता। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाका और दूसर जिला में आज फजर के भूकंप के झटका महसूस करल गल। इस सब झटका के बाद ढेर कोई अपन घर से बाहर निकल गए लंसा। हालांकि अभी ले नुकसान के कोनो खबर नहीं बा। एक संग

0: ये भोजपुरी में समाचार पूरा होगा। आप लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मरने की खबर सुना जा। गजेफा रोड हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 81 बरिस

0: তাকে গঙ্গোপাল সামুনিকে শ্মশান ভূমি লে যাল যাই ক্রিমেশন টুডে অ্যাট 2 PM। মহাত্মা গান্ধী রোড কটেজ মে 91 বরিস কে 91 সং কে শ্রীমতী প্রিয়মবদা ওরি পেদাশ নাম মহাদেব অর্জুন প্রিয়ম সে জস্তি জানল যাথ্রালন গুসরকল হমন অর্থি আজ দিন কে 2:30 বেটা ঋষি কুমার ওরি কে ঘর মহাত্মা গান্ধী রোড কটেজ সে উঠা কে কাহো আকাশিয়া কটেজ কে শ্মশান ভূমি লে জাল যাই ক্রিমিশন টুডে অ্যাট 2:30 PM। सुभाष रोड बुधोदो हमलेट में 70 बरिस के 70 की श्रीमती लक्ष्मी सन्यासी पैदाश नाम दुर्गा माँ अर्जुन ज्योति से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी आज सांझ के 3 बजे उनकर बेटा नितिन सन्यासी विष्णु के घर सुभाष रोड बुधोदो हमलेट से उठा के पितों के कब्रस्तान ले चल जाए फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। बिलवेडिया रोड ब्रिजेवेजिया में 87 बरिस के 87 के श्रीमती भगवानी ईश्वरी कालीचंद पैदाश नाम ननकू अर्जुन मगाजिन से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी आज दिन के 2:50 कर बेटा सूरज कालीचंद के घर बिलवेडिया रोड ब्रिजेवेजिया से उठा के लाभोंचय के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड खान पॉइंट पीमा में 76 बरिस के 76 के श्री अजय किस्तु जिन सीताराम से जस्ती जानल जाथरलन गुजरकल हवन अर्थी आज दिन के 10:50 उनकर घर रॉयल रोड खान पॉइंट पीमा से उठा के 25 के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टुडे एट 10:30 AM। एवेन्यू बेतु कंपासी काथोबोन में 44 बरिस के 44 के श्री नारायण दत्त कुमार धनुकचंद जिन चंदन से जस्ती जानल जाथरलन गुजरकल हवन उनकर अर्थी काल उनकर घर एवेन्यू बेतु कंपासी काथोबोन से उठा के कोडगौट के श्मशान भूमि ले जाल जाए समय के बारे में बाद में सूचित करल जाए। काली माता रोड लाल माटी में 66 बरिस के 76 के श्री इंद्रदेव पुनाई जिन ईश्वर से जस्ती जानल जाथरलन गुजरगल हवन अर्थी काल दिन के 11 बजे उनकर पत्नी विदुला पुनाई के घर काली माता रोड लाल माटी से उठा के गांधी रोड लाल माटी के श्मशान भूमि ले जाल जाए क्रिमिशन टुमरो एट 11 AM। जितना जना शोक में बा उलोक के संगे हमने के हमदर्दी बा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 8:19 हो चुके हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का नजाना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं। तो चलिए, इस समय से लेकर 8:50 पर आपके लाए हैं चंद डुएट्स गाने। और पहली डुएट जो है पंकज दास और कविता कृष्णमूर्ति की मीठी आवाज़ों में मोहब्बतों का सफ़र है। बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

8:20 हो चुके हैं। चंद प्यारे प्यारे डुएट्स आपके नाम हम कर रहे हैं इस समय। और पहली जो डुएट्स है पंकज उदास और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, जैसे मैंने अनाउंस किया है, तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, इस गाने में प्यार की नरमी, जुदाई की कसक और रिश्तों की खूबसूरती बहुत ही सादगी से बयां की गई है। इसकी धुन सुनते ही मन में एक अलग सी एहसास में हम डूब जाते हैं। तो चलिए, गीतों का ये खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे और अगली भेंट में बहुत ही प्यारा सा गीत आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की मीठी आवाज़ों में आप सुन पाएंगे।

चलिए बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत डुएट आपके लिए शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गीत उदित नारायण अलका याग्निक की मीठी आवाजों में।

श्रोताओं, इस गीत की खासियत इसकी भावनात्मक गहराई है। इसके बोल दिल को छूते हैं और यह एहसास कराते हैं कि मोहब्बत सिर्फ मिलने का नाम नहीं बल्कि समझ, भरोसे और एहसासों का भी सफ़र है। तो चलिए चंद प्यारे गीत आपकी सेवा में। ये अगली भेंट में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की बेटी आवाज़ों में बहुत ही पॉपुलर फिल्म है आंधी।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ रही हैं। जिंदगी है दुआ, फिल्म का नाम अपने आप में एक खूबसूरत संदेश देता है कि जीवन केवल सांसों का सफर नहीं बल्कि ईश्वर की अनमोल दुआ है। हर दिन, हर रिश्ता और हर मुस्कान इस दुआ का एहसास कराती है।

श्रोताओं, जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, रास्ते बदलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, लेकिन उम्मीद का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। जब हम हर पल के लिए शुक्रगुजार होना सीख जाते हैं, तब जीवन का असली आनंद हमें मिलता है। तो चलिए, इसी सोच के साथ हम अगले गाने की ओर बढ़ेंगे।

0: तो चलिए श्रोताओं, इस गीत के साथ ही चंद डुएट्स गाने इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, समय हुआ है हमारी धरोहर का, ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने म्यूजियम पर बतियाब जा, म्यूजियम जोन की हमने के धरोहर, हमने के इतिहास के एगो आईना है। एगो म्यूजियम में वो सब जानकारी आपके मिलेला जोन आपके देश से जुड़ल बा। और ये एगो ऐसा संस्था है जो नॉन प्रॉफिट है, मतलब कि ये मुनाफा करे होला एगो संस्था नहीं है, और ये निरंतर समाज के सेवा में लगल रहेला और विकास में मदद करेला, जनसाधारण खातिर हमेशा खुलल रहेला। मानवता के जोन मूर्त और अमूर्त विरासत, टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज बा, ओकर पर शोध कार्य करके, संरक्षण कार्य करके जनता के सामने प्रदर्शित करेला। वातावरण के ध्यान में रखते हुए वो शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन प्रदान करेला। म्यूजियम की परिभाषा अब आगे जैसा नहीं रह गल बा, वो हर चीज की तरह बदल ले जाता। आगे के समय में एगो म्यूजियम में जाइबा तत आपके चाहिए पुराना वस्तु, पुराना चित्र, पुराना प्रदर्शनी देखे के और ओकर इतिहास समझे के। म्यूजियम आगे के समय में एगो बेजान चीज रहल, लेकिन अब नहीं। आज म्यूजियम एगो सांस्कृतिक और शिक्षा और ज्ञान के आदान प्रदान के जगह है, जहाँ एगो जन समुदाय, एगो समाज, एगो राष्ट्र के धरोहर, ओकर पहचान, ओकर जन आइडेंटिटी बा, ओकर पर जानकारी मिलेला। म्यूजियम के ई नवा परिभाषा के चलते मॉरिशस के नेशनल म्यूजियम भी देखत है जा कि वहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य होल। उधर आप्रवासी घाट में भी एगो ऐसा इंटरप्रिटेशन सेंटर भा, म्यूजियम के बजाय ओकर नाम इंटरप्रिटेशन सेंटर रखा गल, मतलब कि एगो ऐसा जगह जहाँ पर आप अपन नज़रिया से सकबा इतिहास के देखे। एगो ऐसा जानकारी नहीं प्रस्तुत करल गल बा जेकर पर आपके कोनो मतभेद रही, मतलब कि जेकर जैसन ऐतिहासिक परिभाषा रही उस सकी औसने ही इतिहास के देखे। जब इतिहास और धरोहर के बात चलेला तब नहीं सकब जा एगो क्यूरेटर या म्यूजियोलॉजिस्ट के हैसियत से अपन इंटरप्रिटेशन, अपन परिभाषा एगो देश या एगो विश्व पर

0: या एगो समाज पर थोपे, चाहे ओके खुला छोड़े के और हर जन समुदाय या प्रोफेशनल के विचार के सम्मान करेगे। म्यूजियम के गठन भी जन समुदाय के सहयोग से चाहे करेगे, जहाँ पर हर एगो व्यक्ति सकी अपन अनुभव हुआ पर बांटे और उकर आधार पर वो म्यूजियम बनी। कल्चरल टूरिज्म में बढ़ोतरी के संगे संगे पिछला कुछ दशक से दुनिया भर के म्यूजियम में भी वृद्धि होल बा। 1975 में दुनिया भर में 22,000 म्यूजियम रहल और अब ई लगभग 100,000 के संख्या पार कर दिले बा। और इलाका के क्रिएटिव इकोनॉमी के बढ़ावा देवे में म्यूजियम के आज एगो प्रमुख भूमिका बा। कार्यक्रम के आप ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते, कल फिर मिलब जा।
1: चलिए श्रोताओं, एक भोजपुरी गीत आपके नाम हम करेंगे। कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। तो मिलेंगे 10 बजे भक्तिधारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: बजेगा, इस समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। स्टूडियो में गीता आ गई है, इनसे समाचार सुनिए। नमस्कार गीता।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को हमारा नमस्कार। कुड्डो में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा और 7 भवनों के निर्माण की योजना है। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क। परियोजना से 4,000 से ज़्यादा कुशल रोजगार पैदा होने की संभावना है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसर के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और यूएनडीपी द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज़्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुंच का अवसर होगा। विदेश मंत्री धनंजय रावल ने कहा कि AFCFTA में महिलाओं और युवाओं के लिए समर्पित व्यापार प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक पहल है। स्पेशल मोबाइल फोर्स के इतिहास में ये एक ऐसा घाव है जो आज तक नहीं भरा है। 62 साल पहले 9 जुलाई 1964 को पोस्टलाफायत में एक साधारण प्रशिक्षण अभ्यास एक भयानक हादसे में बदल गया था, जिसमें समुद्र की ऊंची लहरों ने 7 युवा सैनिकों की जान ले ली थी। आज सुबह स्मारक स्थल पर आयोजित वार्षिक श्रद्धांजलि समारोह में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। एयर मॉरिशस ने पुष्टि की है कि कल मॉरिशस से रियूनियन टापू जाने वाली उड़ान MK238 में यात्रा कर रहे एक बुजुर्ग यात्री की विमान में चढ़ने के दौरान तबीयत अचानक खराब हो गई। विमान के क्रू सदस्यों ने तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया और हवाई अड्डे के डॉक्टर के विमान में पहुंचने तक हर संभव सहायता दी। जांच के बाद यात्री को विमान से उतारकर आगे के उपचार के लिए एयरपोर्ट मेडिकल पोस्ट ले जाया गया, लेकिन सभी कोशिशों के बावजूद यात्री का निधन हो गया। एयर मॉरिशस ने दिवंगत यात्री के परिवार, खासकर उनके साथ यात्रा कर रहे रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। एयर मॉरिशस ने अपने क्रू और हवाई अड्डे की चिकित्सा टीम को उनकी तत्काल कार्रवाई और पेशेवर सेवाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। और विदेश स्तर पर अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं। इसके बाद आज टर्की, कुवैत, बहरीन और कतर में ईरानी हमले की चेतावनी देने वाले मिसाइल अलर्ट सायरन बजने लगे। और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके और परभणी ज़िलों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के बाद लोग अपने घरों से बाहर भाग आए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आप सभी को नमस्कार और आदाब। प्रस्तुत है आज की चर्चा प्रोग्राम, जिसमें आप समस्त श्रोताओं और हमारे सभी देखने वालों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमें सहयोग दे रहे हैं फैजान टेक्निक पर, प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा और हमारे प्रोड्यूसर हैं रितेश महावीर। और हम बिल्कुल तैयार हैं ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए दिन के 10 बजे तक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर परिवार से के बजट से जुड़ा, हर परिवार के बजट से जुड़ा है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कीमतों में कमी और कुछ आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हर इस चर्चा के लिए हमारे साथ उपभोक्ता मामलों की अधिकारी मौजूद हैं, जिस तरह आप लोग भलीभांति पहचानते हैं। इस समय श्री विशाल सिंह लालमन जी हैं हमारे साथ और श्री सूरज लाल बिहारी जी। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और जैसे कि सब लोग जानते ही हैं कि महंगाई का दौर है, महंगाई का ज़माना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि व्यापार एवं उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, मतलब ई मंत्रालय की जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी कौन सी है श्री लालमन जी?
1: अभी हाई क्वेश्चन हाई प्रश्न जो बोला अभी एगो उकर से आगे आए के आगे एगो छोटा एक्सप्लिकेशन देव। हमने के देश एपोताशों में बड़ी निर्भर है, भारी मात्रा में एपोताशों करीला से। तो जब एपोताशों करीला से तो का होला, जितना एफलाशों दूसर देश के रहेला हमने वो एपोती कर दिला से। तो हाउ का होला, और हमने के एपोताशों ढेर खाद्य सामान है। काहे खाद्य सामान?

0: बस की ढेर चीज हमने उगाई लासा नहीं और पोजो नहीं करी लासा, जैसे कि चार जैसे कि गेहूँ गेहूँ गेहूँ से आटा बनेला है सब नहीं बा हमने के देश में, तो का होला है सब एपोते करी लासा। तो जब एपोते करी लासा तो हो जैसे फ्रेड बा जैसे दुलह के दाम हरदम चहरेला वो उस्ताब नहीं है और ऐसे ऐसे के टैक्स है तो है सब है खाद्य सामान के दाम बढ़ जाला। तो एक्सेसिबिलिटी हमने के ग्राहक जो जो हमने के देश है तो हमने के सरकार लोग के चाहेला सुरक्षा जैसे एक्सेसिबिलिटी देके है सब जमें ढेर महंगा नहीं पिए करियन सा तो हवे खातिन हमने के सरकार हमने के मंत्रालय तो
1: इसी सोच में ये बजट बना लेगा।
0: हाँ तो जैसे हमने के मंत्रालय बा खाद्य सामान के जैसे हर घर में पहुँचाए के हवे खातिन एकाध को सामान में सिपसिद ले हवन जा जमे है सब खाद्य सामान जैसे कि अभी तो अभी अभी बुलब सलाली सुहा बुलब सा अभी हवे खातिन हव सिप सिपा दलाल बा जमे हमने के खाद्य सामान तनी सुन घट जाए और हमने के ग्राहक लोग के राहत पहुँचाई। जैसे कि हमने के जैसे बोला हमने के कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जाता द है सब मिटिगेट करके जैसे बोली ला सर फाइट करके है सब चैलेंज हुआ हवे खातिन हमने के प्रायोरिटी हमने के मंत्रालय के प्रायोरिटी है सब टैकल करके कैसे जैसे अभी बोलनी सिपसिड और कानून बा जैसे हमने जाए ला सर सगरो चेके करके जैसे एगो एगो एग्जरसाइज करी ला सर प्राइस कानिंग काहे है प्राइस कानिंग वा करी ला सर जमे सकब से चेके करे है दमवा रिफ्लेक्टे करता हौ जो शेल्फ में बा उ बिया अच्छा बा कि नहीं जो महंगा बोल बेचाता हौ लाकेश लगे तो हमने एगो कन्फर्मेशन दे दे अब सा और मार्केट सर्वेलेंस करी ला सर मार्केट सर्वेलेंस देखी ला सर जे है जन जन जन दाम बा जन जन दाम बा वो रिफ्लेक्टे करता जन हमने के मंत्रालय फिक्से कर ले बा जैसे हरदम बोली ला सर तीन गो तीन प्रकार के दाम है एगो जन फिक्से है एगो जोन एमओपी बा और एगो जोन लिबरलाइजे बा अभी एगो दूसर एगो एगो एगो चारवा चौथा मत आलबा उमे एसपी और एमओपी वो बा सब्सिडी वो बा और एमओपी वो बा
1: का मतलब है
0: सब्सिडाइज प्रोडक्ट। हाँ हाउ जोन सरकार देने देवेला
1: आवश्यक है कि इमे चाहेला
0: बतावे कि हवे बोली अभी दाम के विषय में आवब सा तब हमनी बोलब सा कैसे चाहेला हो फॉर्म अथवा डाले के जमे छलांग नहीं काट कन्फर्मेशन नहीं मिली उद्योग कमीशन लोग के। हाँ
2: यानी कि जो विचार जो जरूरत है आज के हमने के जो खरीदारी की क्षमता जो बा कमजोर बा इच्छा जाने के चाहिए गल बिजे से हयू बिजे में डलने से यानी कि जो परचेसिंग पावर के मजा मौते करे के तब हमने के सरकार हमने के डिसीडे और बिजे में कि है सब जितना लॉजिक बा बुलब सताली अले कितना लॉजिक में सब्सिडी दलाल बा। सब्सिडी का अर्थ का है
1: मैंने
2: जो हमने के जो बात जब लाकेश में जाते हैं सर ना एगो डिस्काउंट सरकार देवता
0: जैसे बोली ला सर आर्थिक मदद एगो आर्थिक मदद जो सरकार पहुँचावे लन जब में हमने के ग्राहक लोग के क्षमता बढ़ी उ भी हम मेहतनीय करे के हो क्षमता हुआ
1: राहत
2: सोशल जस्टिस आने के जो मिले सकता कि नहीं तो मिल जाता जिनमें सके अपन खरीदारी जिन खाद्य सामान जिन आवश्यकता खाद्य सामान बा सके जा खरीदारी करें।
1: तो भाई लाल बिहारी जी ये जिन पिछला बजट बजट 2022-23 करार कर रहा कौन कौन कदम लेवल गल बा उपभोक्ता लोग खातिर
2: यानी कि है जिन मेन हमने के देखब जाना हमने के जितना खाद्य सामान में हो बिजे वा हमने के बिजे में हमने के सिप सिप डले बा ढेर
1: फूड
2: के जो खाए के चीज जो बा हाँ हई में जो सिप सिप डले बा हमने के ना एगो प्राइस स्टेबिलिटी फंड में कितना एगो दे मिलियन दे बिलियन ऐसे पैसा ये इंजेक्ट करा गल बा जे में सचिन जा को मजे हमने के लॉजिक वा टेंशन जिमिनी हो जाए सकब जा खरीदारी करे ये बा और हमने के जितना हमने के सकब जा जितना आगे के जो गल बिजे में भी जितना डले नहीं सर अभी भी मेंटेन है बराबर जो बिजे में हो रहा गल हला और फिर से अलावा दाजते कर
0: वो एक्सटेंड कर दिलन सर। हां एक्सटेंशन कर दिलन सर और ही फौजी में सिपसी दलाल बा और ही एगो जो
1: जो पिछला मॉस के मेटे सिपसी दलाल
0: मेटिनिया बा मेटिनिया बा और ही हाउ जो बिजे में योजना बनाई लन सर हमने के मंत्रालय और ए

0: एस्तेसे औरी ढेर एपोताशों का रहता जमे सकियन सहौ पोजुआ मंडी में डाले जमे कॉम्पिटिशन रही जब कॉम्पिटिशन रहेला तो ऑटोमेटिक दाम घट जाला हौ सब हमनी के ग्राहक लोग के सुविधा खाती।
1: अच्छा तो कौन कौन पदार्थ पर मिनिस्ट्री देने से सब्सिडी मिलल बा हमनी के बताओ।
2: हमने के जो सरकार गल बीजे से जो हमने के रहल अगर अभी अभी बोले आवत हैं जा हमने के दूध में बा अभी ले तेल में भी बा फोमाज में बा इनफैक्ट मिल्क में दिया पर सब अभी ले बा आर अलावा जितना जन बा हमने के खाद्य सामान में हमने के आर डले हमन जा हमने के डिटाई में सब जाबे जैसे हमने के कान फूड में जैसे कौन मूतों बा कौन बीफ बा चूना बा मच्छी जन बा ना इसमें 20 रुपया डले बा हमने के हमने के सब्सिडी डायरेक्ट हमने के 20 रुपया डले बा कारे हमने के और हमने के जन बा हमने के जन पल्सेज है जन ग्रेसे किनी ले जा दाल जन बा लांटी नोर लांटी रोज हमने के बा हाई में 10 रुपया हमने के सब्सिडी डाल बा।
1: अच्छा जैसे वो दाल की चीज
0: एक चीज आजूते करो माफ करिए जा सब सब ग्रेसे में नहीं डाल बा सब्सिडी है सब ग्रेसे में नहीं डाल बा लांटी रोज बा
2: लांटी नोर
0: बा और ये रेड बीन्स जो हरिकोट रोज बोली ला सा सब ग्रेसे में नहीं बा है सब्सिडी एमओपी बा हां बाकी सब्सिडी नहीं बा खाली हाई जो तीन को मैं मेंशन कर ली हवे में सब्सिडी बा
2: यानी कि डायरेक्ट हमने के बाहर का कम्युनिके हमने के निकले हैं जा हमने के कौन मूतों में कौन बीफ में हमने के कांचुना में यानी कि कोई फ्लेक्स कर सॉलिड इन ऑयल में बा मैकारोनी में बा मैकारोनी जो बा 10 रुपया सब्सिडी डाल बा उनमें हमने के पल्स जैसे बनी सा लांटी रूज लांटी नोर में लचन मीट में बा और इन फैट फूड जो खाना जो लेकाल के चाहिए जा उनमें 15 रुपया बा यानी कि 20 रुपया जो पहला जो बोली सर ना जो कान फूड में बा 20 रुपया में बा मैकारोनी में 10 रुपया डायरेक्ट बा हमने के और पल्स हमने के ग्रेन सेक में अनाज में हमने के खाली जो बोली सर लांटी नोर लांटी रूज हरिको रूज में हमने के 10 रुपया लचन मीट में 10 रुपया और लेकाल के खाना में 15 रुपया यानी कि जैसे लाकेस में जाते हैं सर हाई सब लॉजिक में वो डिस्काउंट डायरेक्ट मिल जाता है हमने के जब मैं सकब जा और खरीदारी सकब जा
0: हवे खातिर हमने के मंत्रालय एगो ऐसे योजना बनैलन जहाँ लैका से बुजुर्ग लोग सकियन से हाई सब में लाभ
2: जाने के एकदम एगो प्रकार से फिक्स सकब चा बोले लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट दे जा इस कारण पहला भाई बोल ना कि एसपी भी बा सब्सिडाइज बोलनी जाना इतना मोटो हमने के सब्सिडी देवत हो जा और वो में भी एगो मैक्सिमम मकअप है उसमें भी यानी कि प्रीवा सकब जा देखे कि मैं फिक्स नहीं बा लेकिन हो मैं खरीदा थे ना सोचे कि 20 रुपया बा सब्सिडी।
1: अच्छा तो जिस सब जैसे पल्सर्स के बारे में जैसे कौन भूतों सब तो डिफरेंट डिफरेंट मौके रहे ला सब बराबर तो सब
0: एगो एग्जांपल ले वब एगो एग्जांपल ले वब कौन मूतों के तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड है
1: ब्रांड
0: जैसे वाटसोनिया बा वाटसोनी बा एक्जिटिया बा मोनोग बा है सब में सब्सिडी जैसे वाटसोनिया एगो कैटेगरी एगो कैटेगरी है हाई कैटेगरी वहाँ में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड बा जैसे जैसे जैसे बोलनी वाटसोनिया में हो
1: मतलब सब में सब जब जहाँ से तो सब में जब भारत में बा
0: और जैसे भाई बोलन कांचुना में सब में बा बाकी जो लिस्टे कर लल बा हाई जैसे ब्राइन बा
2: ब्राइन ऑयल बा चंक्स बा हाई तीन क्वालिटी वा के जो चुना बा हाई में सब्सिडी बा अन्य में नहीं बा उतना सब्सिडी।
0: और जैसे मैकारोनी बोलन भाई बोलन मैकारोनी खाली मैकारोनी में ऐसे दिख बा जैसे पा कोकियाज ऐसे खाली मैकारोनी में ऐसे सब्सिडी दलाल बा सब पास्ता में नहीं सब पास्ता में नहीं खाली मैकारोनी के कैटेगरी में दलाल बा जैसे जैसे एगो एगो एग्जांपल वो रिवोआ कारे मैकारोनी पानजानी मैकारोनी सान रिमो मैकारोनी है सब में खाली मैकारोनी के कैटेगरी में दलाल बा सब्सिडी।
1: अच्छा तो हमने के सकबा बोले कि ई सब्सिडी के महत्व कर ले पोतांस कौन जी हा और ई नहीं रहत तक कौन जी हो
0: हां जैसे बोलनी हाई सब्सिडी नहीं रहत तो दाम बहुत बढ़ जात दाम जैसे हुई एगो आर्थिक मदद सरकार पहुंचावे लन जमे सकी जमे ग्राहक लोग के राहत पहुंचाई जी हई नहीं रही तो बेशिया सब जितना

0: लौचिक बा सबके दाम बहुत मोटे हो जाए। और जैसे देखबा जहाँ लालिसवा में सब महत्वपूर्ण बा, सब ला क्विजिन में चाहे ला है सब जितना
1: मतलब घर घर घर ये सब जरूरी
0: सब ऐसे ही नहीं दलाल बा, एगो काम होल बा पाछे तब है सब में है सब लौचिकवा में है सब सिपसिडवा दलाल बा।
2: यानी कि सब लौचिकवा में सिपसिड दलाल बा लेकिन उनमें भी हम की एमओपी बा एगो मैक्सिमम प्रॉफिट दे ले जा सकें जा उतना प्रॉफिट वा करके कॉस्टिंग भी दा कही जा हमेशा स्पीक कही जा कौन प्रकार के जैसे भाई बोलन एमओपी यानी कि एगो मैक्सिमम रिटेल रिकमेंडेड प्राइस बा हमने के यानी कि एगो कॉस्टिंग भी दा कर जा एगो एगो मैक्सिमम प्रॉफिट एगो मॉस प्रॉफिट दे ले जा लेने जे हम सकब जा बोले कि कंट्रोले में बा उदमवा उमें हमने के हई बरिश्वा सरकार एगो सिपसिड दलीबा 20 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ये सोचे के चाहिए हमने के सरकार हमने के ये प्रयत्न करता जैमें एगो सोशल जस्टिस मिली हमने के सब कोई सकब जा खरीदारी करब जानी मन से बस जैसे भाई बोले ना सब महंगा होती बा यार हमने के हाथ में नहीं है हमने के दियो के जितना चीज हमने के जन दुल में हमने के फ्लास्ट्रो सब कितना कितना चीज बा फैक्ट्रिया ये सब कंसिडर करके ना तब सरकार मालगे हमने के एमओपी बा लेकिन फिर भी उकर सब्सिडी प्राइस दले हैं जा एगो सब्सिडी वेगो पैसा वोते करके ना है सब जितना लॉजिक में हमने के सब्सिडी दलाल बा
1: हमने सकब से बोले कि ये जो चीज अभी सरकार द्वारा इस सब चीज में अति सब्सिडी डाल बा ये काल या ती मतलब 2-3 की बात नहीं है उस सब जांच पड़ताल करके
0: जांच पड़ताल करके सब एगो जैसे जैसे
1: हमने
0: एक्सरसाइज करी ला सा हमने मार्केट सर्वेलेंस करी ला सा जैसे सब जैसे है प्रोजुवन के दाम सब एगो महीना महीना लिवब सा दिखब सा ट्रेनवा कैसे बा कैसे ट्रेनवा बा तब है
1: जैसे कौन कौन चीज लोग जैसे उपयोग में आवे
0: जैसे उपयोग में जैसे जैसे एगो एगो कुन मुटों सब कोई से अभी करी लन सा जैसे मकारोनी सब कोई खा लन सा जैसे कान कैसे कौन बीफ कौन मुटों सब सब चीज जो रेगुलर
2: जैसे हमने जो खरीदारी जैसा करे ना ये सब लॉजिक जो है फास्ट मूविंग आइटम है जैसे सुपर वॉशिंग में फिनी हो जाए हमने खरीदारी मोरिशन लोग खोजे ना खाए के सब चीज में तो ये सब महंगा हो जाता है महंगा होते जाता तब सरकार एमओपी दले बा और उमे एगो सब्सिडी दे लागल बा जहाँ तक हमने के मारक ने हमने के जैसा कब्जा बोले कि मकाओनी जहाँ तक एगो 20 रुपया भी होगल हुई मकाओनी अभी है सब्सिडी दलाल में 20 रुपया ऐसे होगल बा तो वो तैसे बेसे होगल बा है सब जितना देख बा जाना अभी जे कोई जाए सुपर वॉचे देखी दमवा में डिफरेंस बा हम के लोग के
0: चाहे है सब जितना प्रोड्यूस हुआ ढेर एक्सेसिव होगल बा अब अब हमने के जितना ग्राहक लोग बा हमने के देश में सब सकियन से लाभ उठावे देखिए बियासुआ नहीं बोला था जाके 10-15 को उठाए के और ये बा हमने के जो अपन अपन
1: हिसाब से
0: बजट के हिसाब से लिया
2: जाए कानून हो गल बा है सब जितना लॉजिक लिस्ट कर ली जाए बिना और दमवा में जब देखबा जानी मन से देखे के चाहिए सब कोई के ग्राहक मांग करते जाए देखा जा उसमें SP लिखल बा और MOP भी लिखल बा हां
1: तब बोल जा हां तो अपने श्रोताओं से मांग करते हैं इस विषय पर आप लोगों के पास कोई विषय हो कोई प्रश्न हो या विचार देना चाहेंगे तो बेझिझक 4028085 पर हमें फ़ोन करके कुछ मतलब उन लोगों को अपनी सलाह भी दे सकते हैं इस बारे में। तो फैज़न अभी एक गीत चलाने जा रही है।

0: आज की चर्चा।
1: आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा कार्यक्रम में, और हमारे साथ हैं श्री विशाल सिंह लालमन जी और श्री सूरज लाल बिहारी जी, जो कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर्स हैं। और आज हमारी जो विषय है, उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कमी और उपभोक्ता वस्तुओं पर सरकारी सब्सिडी। तो बेशक अगर आपके पास कोई सवाल हो या कोई विचार हो, बेझिझक 4028085 पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी हम यही पूछब जा के एगो श्रोता है लाइन पे नहीं, तो अच्छा था अगर कोनो कमी ऐसा है, कोनो कमी ऐसा एकर उल्लंघन कर लन जा, तो कर जुर्माना कौन चाहिए?
2: जैसे बोलनी सा अभी दाम फिक्स हो, नहीं फिक्स नहीं होल बा, बाकी सब्सिडी दलाल बा और एमओपी वो बा, तो एगो प्राइस फिक्सिंग यूनिट हाउ दाम वा कैलकुलेट करके देवेला उ लोग के बेचे के जे हौला जस्ट हाउ जुन जुन मोटा हुआ डेली हवन बेचे के उसे जस्ती बेचा था एगो कोथा मौसम हा सीधा चाहे सेलिंग कंट्रोल कमोडिटी एट हायर प्राइस द 5000 की छलांग हा। तो हवे खातिन हम जितना कोमियासों हवन हम उ लोग से गुजारिश करब जो दाम फिक्स होल बा मंत्रालय की ओर से हवे दाम पाँच के करिए सा ओकर से जस्ती नहीं बेचिया, कमती सकबा बेचे बाकी जस्ती नहीं। ओकर छलांग अभी महंगा हो गल बा, जैसे बोलनी 5000 है ओकर छलांग, तो कोशिश करिए जा अपन दाम डाले के और ओकर से जस्ती नहीं बेचे के।
3: मैंने जो हवे जो चलान भाई बोले थे ना, हमने

0: प्राइस फिक्सिंग भी में हम कहने के जाने के जन जन दामवा जन चाहे डाले के हम के सरकार हम के लालवा बाई हमेशा हम के जैसे कैसे हम के रक्षा कही जा ग्राहक लोग के हम के लालवा हम के चाहे दाम डाले के तभी हम के जन दमवा जन बा जन जैसे भाई बहन सब्सिडी दलाल बा और एम ओ पी भी बा तो हम के मांग करते हैं जा फिर से हम के ट्रेडर लोग के हम के दमवा चेके करिए जा रोज के सब्जियन जा अपन दाम चेके करे काहे खातिर चाहे चेके करे के दमवा जन बा जिनामिक है सौजे हुई थी रहेला बस एगो मैक्सिमम प्रॉफिट दे जा इस पोजुआ में तो ओकर कॉस्टिंग जन बा सौ सौजे हो जाला लेकिन सब्सिडी बा बराबर बा 20 रुपया की डालती है जा मैंने कि हमके चाहे समझे के पहला हमके तीन प्रकार के दमवा तमेसा बा मॉरिशस में पहला जो दाम फिक्स है जैसे रोटी तो भी कहते हैं जी सर रोटी फिक्स है एगो दूसरा प्रकार के जो दाम जो बोलते हैं अभी एम ओ पी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वा बा तब यानी कि इनमें एगो एगो प्रॉफिट दे दिया जाए तो एगो एगो दमवा फिक्स करा गल बा और उमें एगो नॉम दे सब्सिडी देने जाए 20 रुपया और 15 रुपया 10 रुपया जैसे बा सब्सिडी यानी कि उन लोग के चाहिए एगो हमने के रोज के सेकेंड जा सिस्टम में हमने के बा सेकेंड जा आक्सी बा हम निकले के
1: हमने के प्राइस pfu.gov.mu.org में जाके सब दाम जितना
0: सब बा में है दमवा हमने के ग्राहक लोग भी सेकेंड जा चेके करे अभी तक सब के पोता बा अपने तेनेट मुझे हमने के मिसे कॉमर्स में जा करके ना प्राइस फिक्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ना PFIS ऐसे बोला जाला तो जा करके वो मैं चेके कर बा कर कमोडिटी नेम टापे कर बा कौन मूतों टापे कर बा तो कर दाम मिल जाए आज के दमवा कितना बा हमने के तो दमवा में ओकर सब्सिडी दलागल बा सब्सिडी प्राइस बा में एक से ज्यादा जैसे भाई बोलन ना यदि बेचियन जा तो हमने के कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट हमने के ग्राहक लोग के चाहे हमने के संपर्क बोले के चाहे मैम नमो ने बोलियन जा खाली नाम कहाँ पर बेचा था एनविच सैंक में अभी फिर से तले बोला एनविच सैंक में हमने के टेलीफोन बा 460-2500 बा हमने के ईमेल भी
2: दोनों चीज पर
0: ज्यादा अभी के समय में जो हमने के लागू कर ले जा प्रोमियर जूलियट से SP लिखे के चाहे MOP ओकर दाम AS ओकर मोटो डाले के चाहे
1: और ओकर बात चाहेला मौसम ने करेगी
0: जब यानी कि कैसे ज्यादा नहीं बेचे के चाहे नहीं तो हमने के फिक्स में आती जैसे साधारण रूप से हमने के फिक्स में आती एगो लॉची के 5000 रुपया फिक्स में आती एक से ज्यादा रही 5 गो 10 गो तो मोटे हो जाला 10-15-20 हजार
2: हो जाए अच्छा ये लागू हो गल बा पहली जुलाई से तो अभी तो आज तक 10 जुलाई
0: देखा जाए तो हमने के कितना हमने के एग्जैक्ट नहीं बस स्टैटिस्टिक लेकिन कितना हमने के सेकंड लाओ हमने के कोटो मोशन मिल गल बा
1: जैसे भाई बोलन सकेला प्रीमियर से आज ले एगो 50 कोठा ले लेनी सर तो हवे खातिन हमने के ग्राहक लोग के सुरक्षा खातिन हमने काम करत है सर जमे हमने के ग्राहक लोग राहत
0: विदा कर जिज्ञासो भी होता और बोलत है जा कहाँ पर चेके कर अपन दमवा देख रोज के अपन सौजे कर और जैसे बुनी सर SP MOP और मोटो डाले के चाहिए
2: एसपी मतलब ये जो सब्सिडी प्राइस
0: और एमओपी यानी कि जितना लॉजिक वाला लिस्ट करने से ना वो सब में जितना सब्सिडी बा वो एसपी डाले के चाहिए और वो सब लॉजिक वो में ओकर एमओपी भी बा
2: तो आप लोग के जितना ऑफिसर्स हवन जा ये मतलब काफी है पूरा देश में मतलब जाएंगे
1: नहीं अभी काम कर रहे सब रिक्रूटमेंट वो हुई अभी हमने के ढेर ऑफिस हमें एक्सपेक्ट अभी लियन सा हमने के मंत्रालय देने और ये एगो चीज और ही बोला अभी ग्राहक लोग के सेंसिबिलाइज करे के जागृति अभियान चलाव थे सर जब मैं उलोक के सकब से एजुकेट करे शिक्षित करे जब मैं कैसे जैसे भाई बोलन सकियन सर कोनो नहीं जाने लन सर मोबाइल में कुछ खोजे एगो बुजुर्ग गर्ल नहीं जाना था वनसा दूत में होता सकियन सा ऐसा का तो ऐसा एक में सुने करे पूछे के बे हई दामवा तो हमने मशवरा दिवो अब सा सलाह मशवरा कर जमे कोनो कोनो मुश्किल में नहीं पड़बा मान लगे उस पर मौसम में हुआ
2: तभी को हेल्पलाइन तो रही हमेशा जब भी
1: हमेशा सुने करिया निविया अकात्रिया सुने करिया कोई एस्पेक्ट उठाए तो तुहरा एगो सलाह दी मशवरा कर

0: ऐसे हमने के ग्राहक लोग के मदद पहुँचा ला सर।
1: तो हमने के सकबा बोले कितना प्रकार के फ्री ऑफिस होला?
0: देखा जैसे भाई बोलन तीन प्रकार के दाम है, अभी गो चौथा चलाल, एगो जोन फिक्से है, एगो जोन में एमओपी है, एगो में लिबरलाइजे है, और एगो में अभी आल बा एसपी प्लस एमओपी, सब्सिडी वो बा और एमओपी वो बा। एगो एग्जांपल वो जैसे सीरियल बा, सीरियल में खाली एमओपी बा, हमें सब्सिडी नहीं डाल बा, और जोन सब्सिडी में जैसे एगो एगो फिर से एगो एग्जांपल देव कौन मुतो ऊ में एसपी है और एमओपी वो बा। और जैसे आलू प्याज ओकर दाम फिक्स है 25 रुपये जैसे बोलनी सर, गैस घरेलू गैस 250 रुपये बेचाला, जैसे रोटी बा भाई बोलन 3.90 रुपये, और जोन जोन लिबरलाइजे है मान लो सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स के दाम फिक्स नहीं है, एमओपी वो नहीं है, वो जैसे
1: जितना
0: हाँ, नहीं एग्जोबिटन एग्जोबिटन एगो रीजनेबल रीजनेबल चाहे ना बेचे के एग्जोबिटन नहीं। हाँ तो हुई तो हाउ जैसे भाई बोलन एगो फॉर्मेट है, एगो फॉर्मेट है अभी दमवा डाले के कानून के हिसाब से
1: सेक्शन से सब सुपरमार्केट के बराबर इसने चाहिए डाले के
0: और कानून अभी अभी अभी लागू होलबा गवर्नमेंट नोटिस नंबर 60 ऑफ 2026 अभी चाहेला एमओपी वा जैसे भाई बोलन एमओपी एसपी जो में एमओपी बा डाला जो में एसपी और एमओपी वो बास दोनों डाला और दाम चाहेला ओकर करेंसी जा एएस और ओकर यूनिट प्राइस वो चाहेला है ओकर यूनिट प्राइस ग्रामाज जैसे बोली ला सर लोजमा ओकर लोजमा वो चाहेला और ओकर वाट मेंशन चाहेला करे के जी वाट रजिस्टर्ड हुआ वाट इंक्लूड डाला जिन वाट नील जो में एगो एग्जांपल हुआ जैसे फ्रोजन फूड में सरकार वाट निकाल दिले वन सर ऊ में वाट जीरो चाहे ला मशू नहीं करेगी जी वाट जीरो नहीं मशू नहीं करबा ऑफेंस एगो ऑफेंस तो चाहे ला हई सब मशू नहीं करेगी हई सब काहे खादिन करी ला सर जब हमने के ग्राहक लोग जनियन स इन्फॉर्मे जैसे बोली ला सर ड्रॉ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन जितना सकब सर इन्फॉर्मेशन देवे ग्राहक
1: लोग के
0: द्वारा इन्फॉर्मेशन जैसे जितना इन्फॉर्मेशन देव सर ग्राहक लोग के वो लोग सकियन सर अपन खुद से फैसला ले हुए हवे खातिन है दमवा हमने दिन ब दिन अमेलियोगे कर हमने के ग्राहक लोग के सुविधा खातिन।
1: अच्छा अभी ले जब पहला जुलाई से अभी ले कितना अच्छा फीडबैक मिलल?
0: जैसे हरदम जैसे एगो रिव्यू मिलेला बहुत पब्लिक लोग पॉजिटिव रिव्यू देवत हवन, सरकार ढेर सब्सिडी ढेर लॉजिक में सब्सिडी दे दिले हवन और लोग राहत और लोग के राहत पहुँचाए के तो पॉजिटिव फीडबैक मिला था, पॉजिटिव फीडबैक मिला था और दिग्वजा है सब के तनी सुन कैसे बोला सेल्स बढ़गल। हाँ सेल्स बढ़गल तो हम सकब बोले ग्राहक लोग
1: ऐसी आशा कर रहे थे जाकि वो लोग आगे अपन
0: जैसे बोले
1: फायदा खुशी खुशी
0: हाँ फायदा फायदा फायदा
2: बस ये डिफरेंस है लॉक का था ना मैंने जाए एगो लॉजिक एगो एग्जांपल की देवत है जाए 200 रुपया रखल तो मैं 20 रुपया कम थी बा 180 रुपये तो होल तो 20 रुपया दूसरे पैसा लेकर के दूसरे चीज सकब जाकि मैंने कि कौन मुतो में 20 रुपया बा हम सब जितना कान के चुना में 20 रुपया बा मकाबूनी में 10 रुपया तो सब बढ़ती महीना के जब को मुझे जब सब करे ना तो वो डिफरेंस लो कि पैसा लेकर के दूसरे चीज सकब जाकि
0: मान लो 10,000 के कीनत हो एगो गाशो एगो काजी बोलत है
1: थोड़ा सा
0: पैसा रगल बा थोड़ा सा पैसा
1: रगल सेव करे हमरा या फिर दूसरे चीज जिन
0: कमी हमने के सर सरकार के प्रायोरिटी जैसे पूछ बोले रहा हम हवे जैसे लोग सकियन से तनी सुन सेव करे जे जमे सक ग्राहक लोग सब उन्नति प्रगति करे है ये सेविंग वा से हवे खातिन हमने के जितना हमने के प्रायोरिटी है हमने के ग्राहक लोग के सुरक्षा खातिन अब सी सुरक्षा खातिन नवा नवा कानून आवत है पस की का है हमने के जो एनवायरनमेंट बा जो स्थिति बा डायनामिक हो गल बा डायनामिक हो गल जैसे आगे बोलनी एपोटाशो में ढेर निर्भर है सर हवे खातिन है सब सुरक्षा पहुँचाए कि ग्राहक लोग के हवे खातिन हमने नवा नवा कानून निकालत हैं सर जब सकियन सा हम चैलेंज हुआ फेस करे हम ये ग्राहक लोग के राहत और सुरक्षा
2: जैसे एक एग्जाम्पल दे जा लेकिन दमवा आज की नहीं है लेकिन मैं जुड़े के दमवा जो बोलते हैं जा यानी कि एगो लॉन्ची नोर हमने के जो एगो मार्क है सीबो लॉन्ची नोर और दाम आगे 31.65 रहा वो मैं 10 रुपया कमती करब जा तो 21

0: How jun jun free me how dolawa kinila sa how fluctuate ho jala how we katin how sab nay sakab sa bully exact the how we katin jesi bhai bulan tani sun fluctuate ho jala har kut MOP wa
1: the pichla program me hamni dawai par bateli jata u lagu hoy ba barabar
0: u lagu
2: ba barabar
0: u chalu ba
2: ke jin dawai ba jin ba jabe chike
0: attention di cardiovascular
2: ke u 50 rupya wa barabar abi de ba ho sab me tine de ke sarkar gal gal bidze me sab dali ba hamni ke ubut mahina lagbhag aise ho rahal ar hay hay bidze wa me हमने के क्षमता बढ़ाई का थी हमने के जिमे लाइक हमने के जितना ग्राहक लोग बस सकें जा खरीदारी करे और पैसा जो रह जाए ना वो जैसे जिन बिजी कहीं ले जा और एक पैसा लेके जाए बस रुपया मौसी जो वोते कहीं ले जा डिफरेंस है लौकी दस सकब जा दूसर चीज खरीदारी सकब जा करे
0: हवे बोली लासा अपॉर्चुनिटी कस है जा सेव करके दूसर चीज सक बकी ने
1: अरे अभी को बात जब भूमि प्लास्टिक की बात बोली ला जाए सब प्लास्टिक बुटे प्लास्टिक बता थी अब किन बता पमी अक्टूब से मतलब प्लास्टिक खातिर और दो रुपया
0: हाँ एगो योजना बनावे लंच कहीं प्लास्टिक तो नहीं सुन कैसे पोल्यूशन करे ला सब तो लॉन्ग मार्केट नहीं अच्छा तो हर खातिर
1: वही से ऐसा तब नहीं से अभी कर गए सब उतना बुद्धि
0: सुन देखो आज करे के लोग के बाकी सरकार जाने लन का करत हवन हवे योजना बनावत हवन
2: जितना कंटेनर जो बा रिज्यूबल सब फिर से यूज करे जैसे अच्छा बा हमने के एनवायरनमेंट में छोटा डेस बा हमने के रह के चाहिए तो इसका तरह सब डल बा तो पोस्ट वाले करके दूसरा चीज फासो से भी हो जाए सर लेकिन ये पूरे अक्टूबर से हमें जाने के चाहिए जितना प्लास्टिक के आइटम रही दो रुपया जैसे हमने के कितना हमने के मोटे हो जाए हमने के और हमने के जितना जितना जो मैं चीनी बा और सब जैसे जैसे महंगा होते रहे लसौते दे के चाहिए चीनी ना तो कमती खाई के चाहिए ये कारण सरकार सब में जैसे जैसे मोटे हो जाला जब कमती खरीद अब जा दूसरा चीज की ना जब मैं अपन लसौते स्वास्थ्य देखे के
1: चाहिए
0: सरकार सरकार जब करे लन हाँ ओवरऑल करे लन करे जब है सब करे लन अपन ग्राहक लोग के ध्यान में रख के करे लन वो लोग के स्वास्थ्य खातिन वो लोग के सुविधा खातिन वो लोग की सुरक्षा खातिन वो लोग की जैसे जैसे कैसे प्रगति उन्नति करे बक्सी अभी के लिपोक जैसे बुलब जा घर बनाए के माटी गिने के फासिल नहीं है वैसे माँ है सब हमने की सरकार सोचत हवन कैसे हाउ फोगवा सकियन से करे हवे खातिन है सब योजना बनावे लन जमे
1: मतलब घर में जो प्रगति हुई ये सब एको घर ओकर बजट के हिसाब से उन लोग के चाहे चलाई के
0: जे जब जैसे भाई बोलन है सब लालिस में जितना लालिस में जब जैबक खरीदे सुपिया मौसी में जे मान ल सिपा 5000 के किन ल त सेव करत हव हाउ में त सब जा दूसर चीज करे है पैसा से जोन सेव करत हव
1: और कई को प्रोग्राम भी हमने कर दी जा कि जोन जोन जरूरी चे ओ है कि ना जिन्ना कि ढेर जैसे सिपात का ताके मकारोनी किन के रख बा ऐसे रख
0: बा बस कि वो परिशेबल
1: गुस है ना और ये
0: वो में दात एक्सपिरेशन हो बा नहीं एगो चीज ऐसे करिया जा जहाँ तुहर लाभ होई कुछ नहीं करिया जहाँ जैसे बोली ला सा कैपिटल टाइड अप किन दे ला विट्रीन में रख दे ला अब नहीं सेवी कर था नहीं अच्छा
2: खर्च भी करब जा सोच विचार के करो अपन अपन एगो चीज सस्ता हो गल बा मकाओनी सस्ता हो गल बा तमन के दो तीन को किन के अपन घर में स्पेस से नहीं बनाई के चाहिए अपन पैसा के हिसाब को वोते कर जितना चीज खा के सामान सेवी हो जाए महीना भर तो सब के किने के चाहिए
1: और अपन दिन से वो लोग अपन प्लांटेशन चीज चीज आप पे लोग अपन दिन से कर के चाहिए
2: अपने कुछ बस ये सब चीज़ की खरीद थे सर तो पैसों फिर हो जाए भाव से करे के चाहिए
1: तो इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम जारी रखेंगे एक और प्यारा सा गाना आप सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए
3: आज की चर्चा रेडियो मॉरिशियस
4: टहर जा मौसी टहर जा उतरे द मौसी उतरे द जगह नहीं मौसी विश्वा में जगह नहीं बा
5: ले लो बाबू ले लो तू घंटा से खड़ा है खरे खरे लीला

0: आज की चर्चा।
1: वस्तुओं की कीमतों में कमी और सरकारी सब्सिडी का उपयोग पर प्रभाव, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और आज की चर्चा से हमें ये समझने का अवसर मिला कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में कमी और सरकार का सीधा प्रभाव आम नागरिक पर के जीवन पर पड़ता है। इस पर आप क्या मतलब बता सकते हैं?
2: सिप्सिलुआ ढेर आर्थिक मदद पहुँचावेलन ग्राहक लोग के, जैसे बोलनी सा सकियन सा अपन बीजेप के पारे करे, हाउ आर्थिक मदद से जो सरकार

0: पहुँचावत हवन उ सबसे सक्षम से दूसर काम करे एगो दूसर अपॉर्चुनिटी मिल जाए कुछ करे के जस्ती अपन घर में
1: तो अभी सुनना जैसे पास सैक्सन लॉजिक में
0: हाँ।
1: घर से मतलब सैक्सन लॉजिक और सकेला बाद में जस्ती
0: हो में हाँ, काहे नहीं काहे अभी तक जैसी बोलनी से हाउ न्यू रेगुलेशन वहाँ में कौन मुतो कान चुना कौन बीफ चिकन लंचन मीट मकाओनी पल्सर जैसी बोलनी से तीन गो में ऊ में सिपसी दलाल बा है बीजे वहाँ में सकेला हाउ बीजे वो में तनि सुन एक्सटेंड कर दियन जा दूसर लॉजिक में काहे नहीं हो सके हम और हमनी के जैसे हमनी के मंत्रालय है सब योजना बनावत हवन जमे हमनी के ग्राहक लोग के सकियन तनि सुन अपन आर्थिक संतुलन में तनि सुन ओडा आने जमे सकियन स जस्ती उन्नति प्रगति करे अपन जीवन में
2: यानी कि जितना आगे के जन करनी सर मिल्क पाउडर में हाँ। के तेल में सब करके तब है बिजीवा में है सब अलौचिक बदलनी सब अब आगे सकेला और मौके सर्वेंस करब जा देखब जा कौन लॉजिक में ज्यादा आदमी लोग खीनत हो जा ओकर में महंगा हो गल बा तो सकब जा कुछ आर अभी आर काम होता वही खातिर हमने के एस्टे से जैसे भाई बोल ना एस्टे से आर लॉजिक एपोते करी ओकर दम्मो जुनबा एगो भाव दाम रही जेमे सकब जा कंपैरिजन अब हमने के ग्राहक लोग के सेकंड जा कंपैरिजन करे हमने के जैसे है जा दम्मो कैसे बा हो के दम्मो कैसे बा तो सकब जा खरीदारी करे हमने के यानी कि सरकार एसटीसी में भी टेंशन पैसा डाली आर लॉजिक में सकियां पोते करी जेमे एगो पैरेलल इंपोर्ट रही सब में सकियां जा हमने के ग्राहक जेमे हमने के लाभोताज रही
0: हां जब एपोताशो बढ़ जा रहा मान लो दो गो एपोते करता हुआ तो जस्ती कॉम्पिटिशन रही मंडी में जब कॉम्पिटिशन बढ़ी तो नॉर्मल दामवा में कॉम्पिटिशन वही रही देख बजा है पोताते प्रमोशन डाला था जस्ती कमती हो गल बा और है कॉम्पिटिटे वो प्रमोशन डाला था तो ऊ में क्या होला हम के ग्राहक लोग के लाभ मिलेला और एगो जैसे जैसे भाई बोलन कहे हाउ सब सिपसी आर्थिक मदद पहुँचाएला से जमे सकब स हाउ उ लोग के जैसे क्षमता है वो लोग के सेफ गार्ड करे क्षमता जब सेफ गार्ड करब तो ग्राहक लोग के सुविधा खातिर और तनी सुन मदद को
1: मौका मिली कैसे कंसर्न मिली कैसे कौन कौन चीज लेवे के उन लोग के जैसे कंपैरिजन सब की करी
0: और देखा है सब चीज में सिपसी ऑफ कोर्स दलाल बा जैसे बोलला 500 पोजी से जस्ट हो सके दलाल बा तो हम बोलब मैम सुपे मैम है सब सुपसित मैं से एगो एगो लालिस करके जाइए ऐसे खरीदारी जैसे इम्पल्सिव बाइंग नहीं करिए इम्पल्सिव बाइंग करब तोरे हानि पहुँचे
1: हाँ
0: एगो स्मार्ट ग्राहक अला एगो स्मार्ट ग्राहक बन जब मैं सकब जा
1: अपन लालिस के जरिए अपन खरीदारी कर अच्छा अंत में कौन चीज बोलब कौन संदेश देब हमने के जितना कोई हमने की सुना था
2: हमने वास्तव में हमने की संदेश
1: एको श्रोता के अच्छा थोड़ा खड़ी में अच्छा
2: वास्तव में देख बस सरकार हमने की ना बहुत प्रयत्न करता जिसमें हमने की खरीदारी के क्षमता बढ़ावे के हमने के देख बार हमने के जितना खाए के सामान में जैसे लिस्ते करनी सा खाए के सामान में सिपसी दलाल बा हमने के लैका लोग के खाना में भी सिपसी दलाल बा हमने के लासौते खातिर हमने के दवाई में सिपसी बा और हमने के ई सलाह देव जा अभी के समय में दाम देखे नहीं मन से
1: बिल्कुल
2: दाम देखे छेके करे नहीं मन से तब खरीदारी कर और गैसी रख हाँ। कुछ रही बाद में सकब जा कुछ प्रूफ ऑफ परचेस हो के चाहिए तब सकब जा कुछ एनफोर्समेंट करे के चाहिए
0: और हम बोलब ग्राहक लोग के जितना सिपसी जितना दाम कमती होल बा भरपूर लाभ लिया जा बाकी किनब जा लिमिट में किनिया नहीं किनिया जा जैसे भाई बोलन सुपे मौसी नहीं करिए अपन घर में बस कि वो सब पेरिशेबल गुड्स है हवे खातिन अपन लिमिट में
2: हमने के बा हमने के वेबसाइट में जाकर के पीएफआई में पीएफआईएस में सब बजा दमवा चेक चेक कर कौन दाम में कितना सिपसी दलाल बा कितना कर दमवा बा एकर से ज्यादा नहीं बेचे के चाहिए नहीं खरीदा जा हमने के लगे बोल हमने जाकर के एनफोर्स कर दे लाल बा हमने के कानून
0: कुछ अंधुत में रह बजा कुछ अंधुत में रह बा कुछ नहीं समझा था हुआ सक बजा एनविच सैंक में कॉल करे न तो 460-2500 में फोन करे जे सलाह मशवरा कर कि नहीं कि आगे

0: में कोनो मुश्किल में नहीं पर बाद में
1: कोनो कोनो जानकारी
0: कोनो जानकारी कोनो विचार से
1: 460-25-00
2: पर बिजी जापान WhatsApp बीबा 5942-8888 सकंजा हमने के संपर्क कर अब जा
1: 5942-8888 ओके तो श्रोताओं और दर्शकों सही जानकारी जागरूकता और जिम्मेदार ग्राहक से हम इन योजनाओं का मतलब इसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आप दोनों मेहमानों ने हमें बहुत सारी जानकारी दी ताकि हमारे जितने श्रोता और जितने दर्शक भी हम लोगों को देख रहे हैं सुन रहे हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन सारी जानकारियों के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं और इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में फैज़न उरूसा और रितेश महावीर के उनके द्वारा निर्मित ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आप श्रोताओं के सहयोग हमें सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार और आदाब।

0: 10 बज चुके हैं। स्टूडियो में गीता जी, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार
1: सभी को, हमारा नमस्कार। कल शाम को दो में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये टेक्नोपार्क 54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 42 मिलियन यूरो के निवेश का प्रावधान है। कुल 7 भवन बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 पहले से ही संचालन में आ चुके हैं। आवा टेक्नोपार्क उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। इस परियोजना में 4,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री के अनुसार युवा मॉरिशस वासियों को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर प्रयोगशालाओं, स्मार्ट उत्पादन इकाई

0: यूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों में अवसर मिलने चाहिए। आबाद टेक्नो पार्क में विशेष रूप से बैलून कैथेटर्स के निर्माण का निर्माण किया जाता है। ये छोटे चिकित्सा उपकरण होते हैं जिनका उपयोग डॉक्टर विशेष उपचार प्रक्रियाओं के दौरान करते हैं। 11 जून 2026 को शासे डोविलाओ मिडलैंड्स में जोनाथन रिशाओ का शुन कुयाम टू का शव मिला था। पुलिस जनता से अपील कर रही है। सीसीआईडी की मेजर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है और जांच को आगे बढ़ाने में मदद करने वाली विश्वसनीय जानकारी देने वाले किसी भी व्यक्ति को 5,00,000 रुपयों का इनाम दिया जाएगा। सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। आम जनता सेंट्रल सीआईडी से 2080868 या 5499877 पर संपर्क कर सकती हैं। और विदेश खबरों में दिल्ली में आज सुबह लगातार भारी बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली में रिकॉर्ड 228.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है जिसके चलते मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा आज और 11 जुलाई के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। काली माता मंदिर रोड लाल माटी में 63 साल के 62 ईयर ओल्ड की श्री विश्वजीत मिटू जो टैक्सी चालक थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह बाद के 3 बजे उनकी पत्नी उमा मिटू के घर काली माता मंदिर रोड लाल माटी से उठाकर बनाकई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। पोंकुलविल नुवेल फ्रांस में 74 साल की 74 ईयर ओल्ड की श्रीमती बबीता गोकुल जो सुरेखा से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे कविराज गौर के घर पोंकुलविल नुवेल फ्रांस से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। बोपला रोड कालबास में 68 साल के 68 ईयर ओल्ड के श्री नवीन चंद्र जीवन जो नवीन से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी ललिता जीवन के घर बोपला रोड कालबास से उठाकर थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। सैनाम रोड सुरीनाम में 71 साल के 71 ईयर ओल्ड के श्री जयराम गोविंद जो राम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी बेटी समीला बाई गोविंद के घर सैनाम रोड सुरीनाम से उठाकर गांव बुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड खान पेंटोपीमा में 76 साल के 76 ईयर ओल्ड के श्री अजय किस्तू जो सीताराम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे उनके घर रॉयल रोड खान पेंटोपीमा से उठाकर पेंटोबिश की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। बेलवेडियर रोड ब्रिजेवेडिया में 87 साल की 87 ईयर ओल्ड की श्रीमती भगवानी ईश्वरी कालीचरण पैदाइश नाम ननकू और जो मागाजिन से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके बेटे सूरज कालीचरण के घर बेलवेडिया रोड ब्रिजेवेडिया से उठाकर लावांच की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। सुभाष रोड पुथोदो हमलेट में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी सन्यासी पैदाइश नाम दुर्गम्मा और जो ज्योति से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर बाद के 3 बजे उनके बेटे नितिन सन्यासी विष्णु के घर सुभाष रोड पुथोदो हमलेट से उठाकर पीटों का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है

0: रेडियो मॉरिशस।
1: श्रोताओं, 10:06 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। हाईलैंड्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है माउ सेल्मा MTMD, माउ सेल्मा वाल्डवाज, माउ सेल्मा ब्लू प्रिंट, माउ सेल्मा पामेसा, माउ सेल्मा ओमनिकेन, माउ सेल्मा VRS बेल्टेयर, NHDC हाईलैंड्स, सिटी 50, बासर रोड,

के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, साथ में है ओआदाली गोड के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज गुरुवार 9 जुलाई 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, इस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके लाए है भक्ति धारा कार्यक्रम।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा आपकी सेवा में इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। और जब मन में आस्था हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, ये सब कुछ जो है काफ़ी है भक्ति से जुड़ने के लिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। गुरुवार का दिन है आज। आज का दिन जो है समर्पित है भगवान विष्णु का, और आपको पता है आज का दिन बहुत सारे लोग जो है विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। वैसे विष्णु चालीसा भगवान विष्णु की स्तुति में लिखी गई है। इसमें 40 चौपाइयों वाली प्रार्थना मानी जाती है। इसे पढ़ने से मन को शांति मिलती है और जीवन की बाधाएँ जो है दूर होती है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा भक्ति गान जो है भगवान विष्णु पर आधारित आपके लाए है विष्णु चालीसा रेडियो मॉरिशस पे।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, 10:24 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। गुरुवार का दिन है आज, और आज का दिन जो है समर्पित है भगवान साईं बाबा को भी। और आपको पता ही है कि साईं बाबा जो है श्रद्धा और सबूरी पर ज़्यादा बल देते हैं, और इसी सीख को हमें अपनी ज़िंदगी में उतारनी होती है। तो चलिए एक प्यारा सा भक्ति गान जो है भगवान साईं बाबा पर आधारित आप सभी सुनने वालों के लिए।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। वैसे जहाँ पर हम भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, तो वहाँ पर हम माँ लक्ष्मी को भी पूजते हैं, और माँ लक्ष्मी को धन, वैभव और सुख की देवी माना जाता है। और कहते हैं नियमित चालीसा पाठ से

10:40 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं। रामायण में उनका जीवन हमें धर्म, त्याग, कर्तव्य और प्रेम की शिक्षा देता है और आज भी रामराज को आदर्श समझकर मानते हैं, जहाँ पर सत्य है, न्याय है और करुणा है।

चलिए श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके नाम हम करने वाले हैं। और ये अगला गीत जो है भक्ति गान जो है आप इसे ज़रूर पसंद करने वाले हैं। वैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सत्य की राह जो है हमें अपनाना है, सही मार्ग जो है चुनकर जो है हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाना है। तो चलिए ये अगला भक्ति गान जो है इसे आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम थोड़ी देर के लिए रोक लगाएंगे। वैसे आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। En ce jonché, terre cassée, providence, fisheries, bambou virieux, bois des armoirettes के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 10 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए कार्यक्रम भक्ति धारा, इसको हम इसका समापन जो है

आरती के साथ करेंगे। और कहते हैं जो भी प्रार्थना हम करते हैं रोज़, हाँ ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को हमेशा ऊपर उठना है, ना कि नीचे गिरना। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप उर्दू कार्यक्रम सायरा की पेशकश में सुन सकेंगे। आप सभी को शुभ संध्या, आप सभी को शुभ दिन।

0: राशि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट संक्षिप्त समाचार गीता जी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, सभी को हमारा नमस्कार। कोड्डो में आवा टेक्नोपार्क का औपचारिक उद्घाटन कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम द्वारा किया गया। 54,000 वर्ग मीटर पर फैली परियोजना में 42 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा और 7 भवनों का निर्माण। उच्च सटीकता वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञता रखेगा आवा टेक्नोपार्क और इस परियोजना से 4,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होने की संभावना है। मॉरिशस की महिला ठेकेदारों के लिए अफ्रीकी बाजार में नए अवसरों के द्वार खुलने की उम्मीद है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड और UNDP द्वारा AFCFTA अवसरों पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 54 अफ्रीकी देशों को जोड़ने वाला AFCFTA 1.4 बिलियन से ज्यादा उपभोक्ताओं वाले विशाल बाजार तक पहुँच का अवसर होगा। मनी लॉन्डरिंग के आरोपी चीनी बिजनेसमैन लिहाय अपने वकील के जरिए अपने ऊपर लगे शुरुआती आरोपों को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। वे कल पोर्ट लुइस की जिला अदालत में पेश हुए। लिहाय को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था जब 2014 में हांगकांग में उनके पर्सनल अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी। उनके वकील मनी लॉन्डरिंग के शुरुआती आरोप की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। और विदेशी स्तर पर पाकिस्तान के एक बोइंग कार्गो विमान का मलबा मिल गया है। 27 साल पुराना ये विमान मंगलवार को शार

0: चा से कराची आने के दौरान अरब सागर के ऊपर रडार से गायब हो गया था। विमान में सवार 5 सदस्यीय चालक दल की तलाश की जा रही है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। काली माता मंदिर रोड लाल माटी में 63 साल के 63-year-old के श्री विश्वजीत मिटू, जो टैक्सी चालक थे और चांद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सफर बाद के 3 बजे उनकी पत्नी उमा मिटू के घर काली माता मंदिर रोड लाल माटी से उठाकर बुनाकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। पोंकुलविल नोवेल फ्रांस में 74 साल की 74-year-old की श्रीमती बबीता गोकुल, जो सुरेखा से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे कविराज गौर के घर पोंकुलविल नोवेल फ्रांस से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। इंग्लैंड में 76 साल के 76-year-old के श्री अनिरुद्ध कुमार चमरू, जो जोगो से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार कल दिन के 1:30 बजे इंग्लैंड में ही किया जाएगा। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

खाक मुट्ठी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ, खाक मुट्ठी में लिए कब्र की ये सोचता हूँ, इंसान जो मरते हैं तो गुरूर कहाँ जाता है, इंसान जो मरते हैं तो गुरूर कहाँ जाता है। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावत क़ुरान पाक, हम्द नातो सलाम और आपके पैगामात। तलाशे इल्म तो पहुंच गया कहां से कहां तक जहां में, तलाशे इल्म तो पहुंच गया कहां से कहां तक जहां में, बता तो सही कौन सा सबक है जो खुदा ने नहीं दिया कुरान में। तो आइए आगाज़ करते हैं सूरह सबा की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये कयामत का वादा कब पूरा होगा। कह दो कि तुमसे एक ऐसे दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे और न आगे बढ़ोगे।

ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग कमजोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम न होते तो हम जरूर ईमान ले आते। जो लोग बड़े बन बैठे थे वो कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनाहगार थे।

और कमजोर लोग उन बड़े लोगों से कहेंगे, नहीं बल्कि तुम्हारी रात दिन की चालों ने हमें रोक रखा था जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और उसका शरीक बनाएं, और जब वो अजाब को देखेंगे तो दिल में पशेमान होंगे और हम काफिरों की गर्दनों में तौक डाल देंगे, बस जो अमाल वो करते थे उन्हीं का उनको बदला मिलेगा

और हमने जिस बस्ती में भी कोई डराने वाला भेजा तो वहां के खुशहाल लोगों ने यह जरूर कहा कि तुम लोग जो चीज देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के, और यह भी कहने लगे कि हम बहुत सा माल और औलाद रखते हैं और हमको अजाब नहीं होगा।

0: और तुम्हारे माल और औलाद ऐसी चीज नहीं कि तुमको हमसे करीब कर दें। हाँ, हमारा मुकर्रब वो है जो ईमान लाया और अमल नेक करता रहा। ऐसे ही लोगों को उनके अमाल के सबब दुगना बदला मिलेगा और वो अमन चैन से बुलंदोबाला इमारतों में रहेंगे। जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में हमें हराने की कोशिश करते हैं वो गिरफ्तार अजाब किए जाएंगे।
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: कह दो कि मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और तुम जो चीज खर्च करोगे वो उसका तुम्हें एवज देगा, वो सबसे अच्छा रिज्क देने वाला है।

और जिस दिन वो इन सब को जमा करेगा फिर फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये लोग तुमको पूजा करते थे? वो कहेंगे तू पाक है, तू ही हमारा दोस्त है, न कि ये, बल्कि ये जिन्नात को पूजा करते थे और अक्सर उन्हीं को मानते थे। तो आज तुम में से कोई किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, और हम जालिमों से कहेंगे कि अब दोजख के अजाब का जिसको तुम झूठ समझते थे मजा चखो।

और जब उनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों की तुम्हारे बाप दादा परस्तिश किया करते थे उनसे तुमको रोक दे, और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आया तो उसके बारे में कहने लगे कि ये तो खुला जादू है, और हमने न तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हों, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा, और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने तकजीब की थी, और जो कुछ हमने उनको दिया था ये उसके दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, फिर उन्होंने मेरे पैगंबरों को झुटलाया सो मेरा अजाब कैसा हुआ।

कह दो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह के लिए दो दो और अकेले अकेले खड़े हो जाओ, फिर गौर करो तुम्हारे रफीक यानी इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह का जुनून नहीं, ये तो तुमको सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले हैं। कह दो कि मैंने तुमसे कुछ सिला मांगा हो तो वो तुम्हारा, मेरा सिला अल्लाह ही के जिम्मे है और वो हर चीज से खबरदार है।

कह दो कि मेरा परवरदिगार ऊपर से हक ही नाजिल करता है और वो गैब की बातों का जानने वाला है। कह दो कि हक आ चुका और बातिल न तो पहले कुछ कर सकता है और न दोबारा कुछ करेगा। कह दो कि अगर मैं गुमराह हूं तो मेरी गुमराही का जरर मुझी को है, और अगर हिदायत पर हूं तो ये उस वही के तुफैल है जो मेरा परवरदिगार मेरी तरफ भेजता है, बेशक वो सुनने वाला है, नजदीक है।

और काश तुम देखो जब ये घबरा जाएंगे तो अजाब से बच नहीं सकेंगे और नजदीक ही से पकड़ लिए जाएंगे और कहेंगे कि हम इस पर ईमान ले आए, और अब इतनी दूर से उनका हाथ ईमान के लेने को कैसे पहुंच सकता है जबकि पहले तो उसका इनकार करते रहे और बिन देखे दूर ही से अटकल के तीर चलाते रहे।

मौजूद सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:29 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है और जुलाई की 9 तारीख है और इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम की आज 23 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समात फरमाइए चंद ऐलानात। जुम्मा 10 जुलाई, जी हाँ, जुम्मा 10 जुलाई सुबह 10 बजे जामिया अयूबिया रिजवी पोर्ट लुइस निकोले रोड में शैला आपा की सरपरस्ती में एक महफिल का अहतमाम किया जा रहा है। नियाज 12 इमाम के मौके पर तमाम खवातीन को शिरकत की दावत है। बाद नमाज ज़ोहर लंगर भी तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा जुम्मा, जी हाँ, जुम्मा 10 जुलाई बाद नमाज ईशा कास्टेलिना हॉल कोचिमिलिटेया मॉरिशस में मौलाना मोहतरम मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की सरपरस्ती में बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया जा रहा है। दावत इस्लामी की जानिब से ख़वातीन के लिए भी ख़ास इंतज़ाम किया गया है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर तुम हमेशा बावजू रहने की इस्तेआत रखो तो ऐसा ही करो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे की रूह वुजू की हालत में कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है।

हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बंदा भी रात को बावजू सोए फिर रात में अचानक उसकी आँख खुले, उस वक्त वो दुनिया या आखिरत की जो चीज़ भी मांगेगा अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता फ़रमाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, और जो शख्स वज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ना ले यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़े उसका वज़ू नहीं। बहवाला अबू दाऊद। मोहतरम सामईन, नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वज़ू है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब मुसलमान मोमिन बंदा वज़ू के दौरान अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ साथ उसके चेहरे से वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो उसकी आँखों ने किए थे। बहवाला तिरमिज़ी शरीफ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग। संगीत प्रेमी श्रोतनो नमस्कार, सुस्वागतम। स्वर तरंग कार्यक्रम में आप अपने स्वागत रसिकों में आशा करते कि आप ठीक आहत मजे तहत एंजॉयिंग करते आहत ऑन MBC रेडियो। कई क्षण अर्ध्या तासा कार्यक्रम सुरू होना है तुम्हारा सगळ्यांच्या मनोरंजनासाठी। तर सिखो नक्कीच त्या कार्यक्रमाचा शेवटपर्यंत म्हणजे 2 वाजतापर्यंत। तर सिखो सुरुवात करूया आजचा आपला सरतरंग कार्यक्रम एका अप्रतिम गणेश गाण्याने।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 9 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए, 2:45 हो चुके हैं और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए, लेकर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद। सो उम्मीद करते हैं ये जो गुरुवार का दिन है अच्छे से बीत रहा होगा। ऐसे आज मौसम में काफ़ी सुधार है ना, मतलब कि पिछले दो दिन काफ़ी ठंड थी, बारिश हो रही थी और आज मौसम देखो तो सुहाना है, धूप खिली हुई है और ऐसे सुहाने मौसम में हम भी आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए अच्छे अच्छे गानों के साथ। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी हमें कॉल करें या अपने मैसेजेस हम तक पहुँचाइए। 4028085 4028085 है नंबर हमारा, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 15251705 पर। और चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ जिसे हमने लिया है उपासना इस फिल्म से।

0: आपकी पसंद।
1: अजी प्यार अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज़ होती है कि क्या कहे। और जहाँ पर प्यार होता है ना, वहाँ पर कोई भी नकारात्मकता नहीं होती है। प्यार जो है सभी बुराइयों को दूर कर देता है, और प्यार जो है सभी रिश्तों में जो है अपनापन भर देता है। तो चलिए, जो अगला गाना है, बड़े ही प्यार से यहाँ पर इस गाने की फरमाइश आई है मेलरोस से, विजय रामचंद्र जी की ओर से। विजय जी हमारा साथ दे रहे हैं, कह रहे सबसे पहले तो ये गाना इनकी ओर से MBC की पूरी स्टाफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और खासकर आपके दोस्त रंजन बालचंद जी के लिए, और मेलरोस के सभी सीनियर सिटीजन्स के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम। सुप्रेम पुजारी फिल्म का ये तराना किशोरदा की आवाज़ में, फूलों के रंग से दिल की कलम से आप सभी के लिए चल पड़ा।

और चलिए यहाँ पर इस खूबसूरत गाने के साथ हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे यहाँ पर बेटी दावीना सिबरोथ को, जो ऑस्ट्रेलिया से इस समय हमारे साथ जुड़ी है। दावीना जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपके मामा शिवरानी की ओर से, साथ में पूरे परिवार की ओर से। यहाँ पर गोपी है, यहाँ पर प्रकाश जी है, रीता है, साथ में पूरे जो है परिवार, यहाँ पर सब पूरे सिबरोथ परिवार की ओर से दावीना जी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आई है आपके भाइयों की ओर से, आपके भाभियों की ओर से। खास प्यार और आशीर्वाद आपकी मामा शिवरानी की ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बज गए हैं, समय हुआ है समाचार का।
2: के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंगलवार को मार्शमैलो निगलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। एक ऐसी त्रासदी जो दम घुटने की स्थिति में तुरंत सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व पर जोर देती है। अधिकारीगण आगाह करते हैं कि मार्शमैलोज, गमी कैंडी, लॉलीपॉप आदि के साथ साथ लीची, अंगूर, लौंगान जैसे फलों को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि इनके निगलने से दम घुटने का खतरा ज्यादा रहता है। कद्दू में आवा टेक्नोपार्क कार्यरत हो गया है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राव गुलाम ने कल शाम इसका औपचारिक उद्घाटन किया। हाई प्रेसिजन मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली इस टेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण में 42 मिलियन यूरो निवेश किए गए हैं और उम्मीद है कि आगे चलकर इससे 4000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना बजट 2026-2027 की रणनीतिक दिशाओं के अनुरूप नए और उभरते सेक्टर विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल ऊर्जा आदि। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्रवाल रेखाओं को खतरा हो रहा है। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बाघुली ने अपना करियर इन नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्रीय संघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यॉर्कशायर और उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में एम्बर हीट हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है। आज कई इलाकों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान है। यूके में एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार के लिए भीषण गर्मी की लहर की चेतावनी जारी की गई है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी सिक्स पीतों में 47 साल के 47 ईयर्स ओल्ड श्री विकास चुलन जो मुन्ना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी माँ श्रीमती स्वस्ति चुलन के मकान एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी सिक्स पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 11 AM ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री विनोद माथुर जो पाकुन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनकी पत्नी श्रीमती अंजनी माथुर के मकान ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। चलिए 3:04 हो रहे हैं, समाचारों के बाद

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम में, और जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर का वक्त है, बहुत से लोग आराम करते करते हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब उनका पसंदीदा गाना उनके लिए चलाया जाए। तो चलिए, आपको इंतज़ार हम बिल्कुल नहीं करवाएंगे और अगले गाने की ओर बढ़ेंगे। अगला तराना जो है यहाँ पर विश्वानी दुमन जी आपके नाम हम करते हैं, वाकवा से आप हमारा साथ दे रही हैं। गाना जाता है इंदिरा के नाम, शारदा के नाम, सहेलिया है नीला, प्रतिभा साथ में है, शोभा, गीता गजादर और सभी दुमन परिवारों के लिए। इस समय माया जी मोताई ब्लाउज से हमारा साथ दे रही है। ये गाना आपकी ओर से आपके सभी दोस्तों के लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। तो चलिए, दीवार फिल्म का ये तराना चल पड़ा आप सभी के लिए।
1: तुम्हें
0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
0: क्या है
1: कह

0: आपकी पसंद।
1: चले, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनके चलते ही मानो जो माहौल है बदल जाता है ना, तो ये दीवार फिल्म का ये गाना कह दूँ तुम्हें, ये कुछ ऐसा ही था। तो चलिए, ऐसा ही कोई गाना सुनना चाहते हैं या किसी का नाम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन आपकी पसंद प्रोग्राम। और चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगला तराना जाता है सभी बंधु परिवार के नाम जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जो है ये हर एक प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

बदलते रिश्ते फिल्म का ये जो तराना है इसका टाइटल ट्रैक आप सभी के नाम, और यही गाना ज्योति जी आपके लिए यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि अगले गाने में बस हमारा नाम जोड़ दीजिएगा। तो चलिए अगला गाना यहाँ पर चलने ही वाला है, तो ज्योति जी आपकी ओर से गाना जाता है प्रीति के नाम, मयूर के नाम, आदर्श के नाम, वेदना के लिए, विमल, विवेक, अविशा सभी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आप लोगों

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, कभी कभार रिश्ते भी बदल जाते हैं, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। अभी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। देखते ही देखते 3:15 बज चुके हैं और अगले गाना जो है जानवर फिल्म का ये तराना होगा। वीना जी, वीना शंभू जी बासन रोड का ट्रिबोन से हमारा साथ दे रही है, कह रही है हैप्पी टू लिसन टू योर प्रोग्राम, थैंक यू। और अगला जानवर फिल्म का ये गाना मेरी मोहब्बत जवां रहेगी आपके नाम हम करते हैं, और सभी शंभू परिवार के नाम हम करते हैं, आप इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए, और ऐसे ही आपका साथ हमें मिलता रहे। सुदेवी जी इस समय वाकवा से साथ दे रही है, गुड आफ्टरनून आपको भी, गुड आफ्टरनून सुदेवी जी, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम। अगला गाना जाता है थ्रियोली की आपकी दीदी लालिता के नाम, सभी कुशल फैमिलीज के लिए। एंड देन वी हैव दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, आत्माराम भैया, विकास, अक्षय, स्नेहा, कीर्ति, कृषिका, लक्षिका, सब जो है मालिंगा से हमारे साथ जुड़े हैं। और वी हैव राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, सभी कुवारू परिवारों के नाम ये अगला तराना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए ये गाने भी तो जवां हैं, इसलिए तो इन गानों को एवरग्रीन कहा जाता है ना। चलिए गाने तराने ऐसे जो दिल को छू जाए, तो ऐसा ही कोई गाना आप सुनना चाहते हैं तो बेशक इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं। और अभी के लिए बढ़ते हैं हम इस अगले तराने की ओर। त्रिशूर फिल्म का ये जो अगला गाना है, लता जी, किशोर दा, यशुदास जी की आवाज़ों में, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। कोंगमा से दिलीप जी आपके नाम जाता है ये तराना, आपकी ओर से योगेश, कविता, किश्नवी, मनीषा, निशान, रथ, आरव, इंदिरा, दानन सभी के नाम जो इस समय हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए कोई खूबसूरत सा गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं या गानों के ज़रिए अपने दिल की बात किसी को कहना चाहते हैं, बेशक आप हमारा साथ दीजिए। आपकी पसंद इस प्रोग्राम में

0: की पसंद।
1: जी हाँ, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। और चलिए मोहब्बत के, प्यार के इस सिलसिले को इन गानों के ज़रिए हम आगे ले जाते हैं। और कोयला फिल्म का ये अगला तराना हम जोड़ते हैं। गाना जाता है यहाँ पर आशा जी आपके नाम, कुतित से हमारा साथ दे रही है। गाना मामा कुमारी के लिए, नेफ्यू शुभम के लिए, ऋषभ के लिए, दीदी आरती के लिए, जीजू राज के लिए, सभी जानू फैमिलीज़ के नाम, साथ में चित्रा जी के नाम, विजय जी के नाम और सभी दोस्तों के लिए और ख़ास कर हमारे तमाम सुनने वालों के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए, कोयला फिल्म का ये तराना भी आप सुन रहे थे। कोयला ये जो फिल्म है, इसमें नज़र आए थे शाहरुख खान, साथ में थी माधुरी दीक्षित। बड़ी ही कमाल की फिल्म थी। और चलिए, ऐसे में हम बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। अगला जो गाना है रिवे दे क्रियोल से, साधना जी की ओर से फरमाइश आई है। और ये गाना जो है जाता है हम बेवफा हरगिज़ न थे, जाता है मौदल बेग, इनके दामाद सतीश के नाम, बेटी है अनुषा, साथ में नाती है जिया है, तेजल है, गौरव है, लारोजा से पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा है, बेटा है कुशल, बहू है संहिता यूनियन पार्क से, बेटा है नीतीश, बहू है काबीना, नाती है कियान और सबसे छोटा है लड्डू गोपाल। चलिए, आपके लड्डू गोपाल के नाम भी अगले गाने को हम करते हैं। तस्वीक है दुबई से भी, आपके पूरे परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, सभी जीवन परिवारों के नाम इस गाने को हम करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना जो है दिल लगी इस फिल्म का गीत है, लता जी की आवाज़ और गाना जाता है कटरबन से स्वस्ति जी आपके नाम, आपकी ओर से आपकी बेटी लेखरानी और बेटे सुमित के लिए ये गाना। और इस समय जो है निशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे प्रोग्राम से और कह रहे कि लिसनिंग टू योर ब्यूटीफुल शो और गाना जाता है आपकी ओर से MBC रेडियो की पूरी टीम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही गाना आपके नाम भी निशाल।

और चलिए आपके पसंद में बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। अगले गाने के जरिए हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देंगे उन सभी को जो आज मना रहे हैं अपना जन्मदिन। सो जितने भी लिसनर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके दोस्त, उनका जन्मदिन है या आने वाले दिनों में जन्मदिन मनाने वाले हैं, सो आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से। और आज सावित्री राम गुलाम जी अपना जन्मदिन मना रही है, वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और सावित्री जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार की ओर से, सभी राम गुलाम परिवार की ओर से, खासकर आपके बच्चों की ओर से, दिनेश है, मनीषा है, ज्योति है, दीपा है, दीपक है, नाती पोतों की ओर से सभी राम गुलाम परिवार ने आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। और चलिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम के हम लगभग अंत तक आ गए हैं। जाते जाते ये आखिरी गाना अनीता जी आपके नाम जाता है, फ्लिक ऑफ लक से आप हमारा साथ दे रही है। यही गाना आपकी ओर से आपकी बहनों के नाम शोभा है, अनुराधा है, लक्ष्मी है, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फ्लिक ऑफ लक के आपके पूरे परिवार के नाम। इस समय शातो बनारस से ज्योति जी हमारा साथ दे रही है, तो यही गाना आपके लिए भी ज्योति जी गाना जाता है। आशनी के नाम, रेखा, सुरेखा, सभी मधव परिवारों के लिए। तो चलिए इसी गाने के साथ आज के ये जो आपकी पसंद का सफ़र रहा ये ख़त्म होने को चला। हमारी आपकी मुलाकात आपकी पसंद इस प्रोग्राम में दोबारा होगी, लेकिन अभी के लिए भक्ति सागर इस कार्यक्रम में हम आपका साथ देने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा रेडियो मॉरिशस पर। धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति सुन लीजिए। बेलिया के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है। बेलिया के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक पोनलॉजिए, रॉयल रोड लालूसी बेलिया, मौसल मौलाशेमिने, बेलरोज, क्लेमोशिया, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 11 जुलाई को सुबह के सवा आठ बजे से सपैर के 4 बजे के बीच, सुबह के 8:15 से सपैर के 4 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी एक ज़रूरी विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भक्ति सागर।
1: गुरुवार 9 जुलाई एक बार फिर से हम आपकी सेवा में जुड़ चुके हैं और भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है हम आपका साथ देने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ साथ हैं और 5 बजे तक जो है भक्ति गीतों का ये कार्यक्रम चलेगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। कहते हैं कि जीवन में जब हालात विपरीत हो, जीवन में जब समय ठीक ना हो, तो बस अपना ध्यान जो है ईश्वर के चरणों में लगा देना चाहिए। अपना ध्यान जो है ईश्वर की शरण में जाने के लिए लगा लेना चाहिए और ईश्वर की शरण में जाकर ही सभी प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। ईश्वर की शरण ही है जो हमें सभी दुखों से पार लगाती है, जो हमें सभी संकटों से पार लगाती हैं। तो चलिए इस एक घंटे के अंतर्गत हम भी ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं और अपने मन की हर बात ईश्वर से कहते हैं। भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम को आरंभ करते हैं।

चलिए भगवान गणेश के नाम से हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भगवान गणेश जो है सभी विघ्नों को दूर करते हैं, भगवान गणेश जो है सभी संकटों को दूर करते हैं, हमारे जीवन को सुखमय करते हैं, हमारे जीवन को आनंद से भर देते हैं। तो भगवान गणेश की अपार कृपा जो है वो सब पर रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। गुरुवार का दिन है तो चलिए इस साई भगवान की आराधना करते हैं, साई भगवान के नाम से कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। और इस गाने के तुरंत बाद जो है हम सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा, डॉक्टर शांति महावीर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: और चलिए श्रोताओं, भक्ति सागर इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम सुनेंगे कार्यक्रम पीयूष धारा, डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
2: आइए सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
3: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के बालकांड की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हमें गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, ताड़का वन में पहुंचकर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र श्री राम को राक्षसी ताड़का का वध करने का आदेश देते हुए कहते हैं कि नहीं ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तमा चातुर्वर्ण्या हितार्थ ही कर्तव्यम राज सुनोना। कि हे राम, ताड़का स्त्री हैं, इसलिए शायद तुम स्त्री का वध करने से संकोच कर रहे हो। परंतु तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ही है सभी को अभयदान देना। हे रघुनंदन, तुम यज्ञ की रक्षा करने आए हो। राक्षसी ताड़का को मारे बिना तुम यज्ञ की रक्षा कर ही नहीं पाओगे। अतः तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और मेरे आदेश का पालन करो। श्रोताओं, मनुस्मृति में क्षत्रिय के कर्म को रेखांकित करते हुए मनुजी महाराज लिखते हैं कि प्रजानाम रक्षणम दानमिज्ञा अध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। इस श्लोक के माध्यम से क्षत्रिय के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है। शास्त्रों का अध्ययन करना क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। संध्या काल में अग्निहोत्र करना उसका दूसरा आवश्यक कर्म बताया गया है। लोभ व्यभिचार दुर्व्यसन से दूर रहकर शुभ कर्मों में लीन रहना और पक्षपात रहित होकर श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करना क्षत्रिय का तीसरा कर्तव्य बताया गया है। और क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य सब विधि से प्रजा की रक्षा करना, उनके कष्टों का निवारण करना दर्शाया गया है। श्री राम श्रेष्ठ पुरुष थे, क्षत्रिय थे, इसलिए महर्षि विश्वामित्र उन्हें ताड़का वध के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे नरों में श्रेष्ठ राम, तुम कर्मणा क्षत्रिय हो। कर्मणा क्षत्रिय के नाते तुम सांगोपांग वेद आदि शास्त्रों को पढ़ चुके हो। संध्या हवन दान आदि सुकर्मों में तुम नित्य लगे रहते हो। अब समय आया है कि तुम प्रजा को अभयदान दो, उनकी रक्षा करो, ताड़का को मारो और प्रजा के दुखों का अंत करो। इसलिए तुम अधिक मत सोचो, ताड़का स्त्री है तो क्या हुआ, वह राक्षसी है, असभ्य है, उपद्रवी है, उसे मारना धर्म सम्मत है। श्रोताओं, अथर्ववेद का मंत्र कहता है कि इंद्रम जहि पुमांसम या तो धानमोत स्त्रियम मायया शाश दानाम विग्रीवासो मोर देवा अरिदंतु माते दृश्यंत सूर्य मुचरंतम। यह मंत्र राजा को आदेश देता है कि हे राजा, जो पुरुष प्रजा को दुख दे उसको समाप्त कर दो, और जो स्त्री छल से या कपट से दूसरों को पीड़ा दे उस पर भी दया मत करो। ऐसी कुस्त्री से तुम पीछा छुड़ाओ। दुष्ट चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसे दंड देने में क्षत्रिय को संकोच कभी नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, महर्षि विश्वामित्र के शास्त्र सम्मत और उत्साहवर्धक वचन सुनकर श्री राम बोलते हैं कि गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमे यस्य वचनम कर्तु मुद्यतः। कि हे गुरुदेव, आपके आदेश का मैं अवश्य पालन करूँगा। गौवों और ब्राह्मणों की रक्षा करके अपना धर्म निभाऊंगा। ब्राह्मण परोपकार के लिए जीते हैं, ये राग द्वेष से परे होते हैं। सच और झूठ का विवेक पूर्वक विवेचन विश्लेषण करके
ये सत्य को ग्रहण कर लेते हैं और झूठ

को त्याग देते हैं। ब्राह्मण वेद के रक्षक होते हैं। पृथ्वी से लेकर परमात्मा तक का विशेष ज्ञान रखते हैं। और हे गुरुदेव, पशुओं में श्रेष्ठ गौ माता की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। अतः मुझे राक्षसी ताड़का का वध करना स्वीकार है। ऐसा करके मैं ब्राह्मणों और गौवों की रक्षा करूंगा और देशवासियों को सुखी भी कर पाऊंगा। ताड़का अकारण ही ब्राह्मणों को मर्म भेदी शोक दे रही है, उन्हें मानसिक वेदना पहुंचा रही है। उस पर दया करना अच्छा न होगा। श्रोताओं, महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां रुक्मणी और लक्ष्मी दोनों देवियों में वार्तालाप होता है। बात बात में श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी देवी लक्ष्मी से पूछती है कि हे देवी, इस संसार में किन लोगों के बीच में आप रहना पसंद करती हैं? रुक्मणी जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए देवी लक्ष्मी कहती है कि स्वधर्म शीलेषु च धर्मविद्सु वृद्धोपसेवा निरते च दान्ते सत्य स्वभावार्जव संयुतासु वसामि देवद्विज पूजिकासु। कि हे रुक्मणी, सुनिए, मैं उन सौभाग्यशाली कर्मपरायण और सत्व गुणों से युक्त पुरुषों के बीच में वास करती हूँ जो स्वभाव से धर्मज्ञ होते हैं, और जो स्त्री वृद्धों और ब्राह्मणों की सेवा करती हैं, ब्राह्मणों के आदर सत्कार में सर्वदा तत्पर रहती हैं, उसमें मैं निवास करती हूँ। परंतु जो स्त्री लज्जा त्याग कर निर्दयतापूर्वक पाप का आचरण करती है, कलह प्रिय होती है, धैर्यहीन होती है, ब्राह्मणों और पशुओं का तिरस्कार करती है, उन पर अत्याचार करती है, उन स्त्रियों से मैं हमेशा दूर ही रहती हूँ। ऐसी स्त्रियों पर मैं अपना आशीर्वाद कभी नहीं बरसाती हूँ। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं कि भावेन यस्मिन निवसामि पुंसि सवर्धते धर्म यशो अर्थ कामेह। कि हे रुक्मणी, मैं स्त्री और पुरुष में भावना के द्वारा निवास करती हूँ। जो लोग ब्राह्मणों वृद्धों और गौवों को आदर देते हैं, उनके यहाँ वास करके मैं उन्हें धर्म यश धन और कामना से संपन्न करती हूँ। इन लोगों का धर्म यश और धन कभी घटता नहीं है, बल्कि सदा बढ़ता ही रहता है। श्रोता भाई बहनों, बात स्पष्ट है कि जहाँ ब्राह्मणों और गौवों का आदर मान होता है, वहीं पर स्वर्ग होता है। राक्षसी का वध करके क्या श्री राम और लक्ष्मण ताड़का वन को सुख का धाम बना पाएंगे? यह हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। तब तक के लिए अंजू को और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नई बातें सीखते रहनी चाहिए। जीवन में ये जो बदलाव आते हैं, जो परिवर्तन आते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभार हम पुरानी समय में इस तरह से उलझ के रह जाते हैं कि नई चीज़ों को सीखने का अवसर नहीं मिलता है। और कुछ नया सीखने के लिए कहते हैं कोई उम्र की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एक समय आएगा तो हम चीज़ों को करेंगे, समय मिलेगा तो करेंगे। और समय जो है कभी आता नहीं है, बल्कि समय जो है निकालना पड़ता है, समय जो है ढूंढना पड़ता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। तो बस यदि लगे कि जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक चीज़ों का जीवन में आने की आवश्यकता है, ऐसे में कुछ नई चीज़ों को जानना भी बहुत आवश्यक होता है। तो बस कोशिश हमारी यही होनी चाहिए हमेशा कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, अच्छी बातों को जानते रहना चाहिए, अच्छी बातों को समझते

भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भक्ति सागर यह कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर चल रहा है। ये जो कार्यक्रम है चलता है हर गुरुवार को सपेर के 4 से 5 बजे के बीच, और गुरुवार का दिन है तो चलिए इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान साई की आराधना करते हैं। भगवान साई की शरण में जाते हैं।

और श्रोताओं, इसी के साथ चलिए हम बढ़ेंगे श्री विष्णु चालीसा की ओर और भक्ति सागर में इस विष्णु चालीसा के साथ भगवान विष्णु का ध्यान हम करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और इन्हीं की आराधना के साथ भक्ति सागर इस कार्यक्रम का समापन भी करते हैं। आप सबका साथ रहा, धन्यवाद। 5 बजे आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का कार्यक्रम, तो हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
3: जी हाँ, सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर। और चलिए, 5 बज चुके हैं, गुरुवार 9 जुलाई, और यहाँ पर हम आपके साथ साथ हैं और साथ साथ रहने वाले हैं 6 बजे तक। भक्ति गीतों का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और यहाँ से एवरग्रीन गानों की शुरुआत होती है। एवरग्रीन गाने यानी कि ऐसे गाने जो आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। आज भी इन गानों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की याद आ जाती है, कोई लम्हा याद आ जाता है, कोई पल याद आ जाता है। तो चलिए, आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म साजन की सहेली फिल्म से, रफ़ी साहब और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज़ों में।

0: जो सिलसिला है शुरू हो चुका है और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। लता जी की आवाज में मैं तुलसी तेरे आंगन की इस फिल्म से लिया गया।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: चले सदाबहार गीतों में आप जुड़े हुए हैं और इन गानों की क्या बात है। इस समय ऐसे गाने सुनने को मौका मिलता है ना, तो मानो पूरे दिन की जो थकावट होती है वो दूर हो जाती है। तो चलिए, अगला तराना भी कुछ ऐसा ही है। खामोशी फिल्म का ये गीत है किशोरदा की आवाज़ में, आप सब के नाम। वो शाम कुछ अजीब थी,
2: वो शाम

अजी कोई बात नहीं है, बस आपका साथ मिल रहा है तो ये सफ़र हमारे लिए भी खूबसूरत हो गया है। बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं, उन्हें वो गाना बड़ा अच्छा लगा, वो शाम कुछ अजीब थी। यकीनन हर एक शाम अपने आप में खास होती है, लेकिन कभी कभार कोई शाम कुछ और ज़्यादा खास हो जाती है, जब कुछ खास लोगों से मुलाकात हो जाती है या कोई खूबसूरत सा गाना हम सुन लेते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है ना। तो चलिए, यहाँ पर सदाबहार गीतों का ये जो प्रोग्राम है, हम तो इसे एंजॉय कर रहे हैं, उस ओर से आपके इतने सारे मैसेजेस हमें आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए। इस समय जो है हमारे साथ परी जी जुड़ी हुई है, परी है माधुरी है, परी जी है, ओके। हमारा साथ दे रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर अगला गाना आपके नाम हम करते हैं। यहाँ पर सूरज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए, आपके प्यार भरे साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो गाना है वो भी बड़ा कमाल का है, चलिए साथ मिलकर सुनते हैं। अमृत फिल्म से लिया गया मनोहर उदास और अनुराधा जी की आवाज़ों में।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, जिंदगी में कौन कहाँ कब तक साथ देता है ये तो किस्मत की बात है, लेकिन जब तक जो भी हमारे साथ है हम भी उनका साथ दें, है ना, हम भी उनकी कद्र करें, हम भी उन्हें समय दें। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एक दूसरे को समय न देने के कारण, एक दूसरे को नहीं समझने के कारण काफ़ी रिश्ते जो है उनमें दूरियां आ जाती है। और आजकल तो ज़माना ऐसा है, आजकल तो समय ऐसा है कि हर कोई अपने आप में अकेला है किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से। तो अगर मौका मिले हमें अपनों के अकेलेपन को दूर करने की, तो ये छोटी सी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में साथ देने वाले लोग, समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अगर आपके पास, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको समझते हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं।

0: जी हाँ, आने वाले कल की अगर हम बात करें तो आने वाला कल हमें उत्साहित तो करता ही है, एक्साइटेड तो करता ही है, और साथ ही एक थोड़ा सा डर भी लेकर आता है। लेकिन कहते हैं ना कि आज अच्छा हो तो आने वाला कल भी अपने आप में अच्छा ही होता है। चलिए, अभी के लिए तो हमारे जाने का समय आ गया है। आने वाले दिनों में हम ज़रूर आपसे मिलने आएंगे। आज इतने प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया, इतने सारे मैसेजेस के लिए शुक्रिया। यहाँ पर माया जी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है, गानों को पसंद कर रही है। तो चलिए, जाते जाते ये अंतिम गाना आप सबके नाम हम करते हैं। इसी के साथ सदाबहार गीतों का ये प्रोग्राम भी समाप्त हो जाएगा, और ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर साथ देते रहिएगा। जब भी मौका मिलेगा जुड़ते रहिएगा। 6 बजे जो है आप सुनेंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर, और शुभ संध्या आप सभी को हम कहेंगे। और इस अर्पण फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और जल्द फिर लौटेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद आप सभी के साथ के लिए।
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6 बजे हैं। गुरुवार 9 जुलाई 2000

0: 26 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एंडोवैस्कुलर मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले आवा टेक्नोपार्क का कल उद्घाटन किया गया। इसके निर्माण में अभी तक 1 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है, जिससे अब तक 200 कुशल नौकरियां पैदा हुई हैं और 2 इमारतें कार्यरत भी हो गई हैं। आज पोतली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और सिंगापुर के उच्चायुक्त लिम मिंग यांग के बीच रस्मी मुलाकात हुई। मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन मजबूत करने के साथ साथ निवेश आकर्षित करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर मॉरिशस को अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी देखता है। बूस्ट टू लोकल प्रोडक्शन स्कीम अब सहकारी संगठनों के लिए उपलब्ध है। यह सहायता योजना कृषि एवं खाद्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रति परियोजना 3 लाख रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने मॉरिशस में कोऑपरेटिव क्षेत्र के लिए एक नई रणनीतिक योजना तैयार करने के तहत आज सुबह आयोजित एक कार्यशाला में इस बात की घोषणा की। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने अपना कैरियर कोरल्स के नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। और विदेशी स्तर पर जोरदार ट्रॉपिकल तूफान माइसाक ने दक्षिण चीन पर किया है प्रहार। कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मॉरिशस के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तय हुआ है, जब कल कुदो में आवा टेक्नोपार्क का उद्घाटन किया गया। आवा टेक्नोपार्क एंडोवैस्कुलर मेडिकल उपकरण बनाने में विशेषज्ञता रखता है। इसके निर्माण में अभी तक 1 बिलियन रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है, जिससे अब तक 200 कुशल नौकरियां पैदा हुई हैं और 2 इमारतें कार्यरत भी हो गई हैं। इस परियोजना का उद्घाटन कल शाम कई महानुभावों की उपस्थिति में किया गया। इनमें प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीनाना रामगुलाम तथा मॉरिशस के लिए फ्रांस के दूत फ्रेडेरिका बोनटेम शामिल थे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मॉरिशस को एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने तथा युवाओं के लिए रोजगार पर बल दिया। सिंचा मोटू की रिपोर्ट पर विवरण रजनी बिकर का।
1: 54,000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल पर कायम आवा टेक्नोपार्क मॉरिशस का पहला टेक्नोलॉजी पार्क है, जो उच्च टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित।
2: Cette salle blanche, vous la voyez, elle est très très grande. C'est une des plus grandes d'Afrique.
1: नाटक मेडिकल मॉरिशस में 25 वर्षों से अधिक समय से चिकित्सा सामान तैयार करती है और वो आवातक टेक्नोपार्क का पहला इक्विपमेंट है। कंपनी हर साल अमेरिका, यूरोप और भारत की ओर करीब 1 मिलियन कैथेटर्स का निर्यात करती है। नाटक मेडिकल के सीईओ स्टेफान लिफेवर ने कहा,
3: Dans sa conception, Ava Technopark a travaillé aux côtés de Natech Medical.
1: आवा टेक्नोपार्क नाटक मेडिकल के साथ काम करता रहा है ताकि चिकित्सा सामान तैयार करने के लिए समर्पित एक उचित वातावरण कायम किया जाए। इमारत में संबंधित क्लीन रूम्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुकूल हैं, प्रवेश सुरक्षित है। इस परियोजना के साथ मॉरिशस को इस क्षेत्रफल में एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेटर की तरह स्थापित करने की महत्वाकांक्षा है। आवा के संस्थापक एवं अध्यक्ष वैसों लागौट ने कहा, 1 बिलियन रुपए से अधिक की रकम निवेश की जा चुकी है, 5 लाख टिकाऊ एवं क्वालिफाइड नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। आने वाले वर्षों में अन्य इमारतें भी बनाई जाएंगी ताकि औद्योगिक क्षमताएं विकसित की जा सके। आवा टेक्नोपार्क को टिकाऊ इनोवेटिव मॉडल की तरह कायम किया गया है। ये केवल एक सामान्य फोटोवोल्टाइक पैनल्स नहीं बल्कि

0: हमने देश में स्मार्ट ऊर्जा संपन्न इकोसिस्टम विकसित किया है। 1.3 मेगावाट सोलर पैनल्स, 2.2 मेगावाट स्टोरेज बैटरी और एक पूर्ण स्वचालित प्रणाली। स्थल करीब 80% रूप से ऊर्जा को लेकर स्वायत्त है।
1: L'énergie excédentaire alimente nos bornes de recharge pour véhicules électriques.
0: फ्रांस के राजदूत फ्रेडेरिक बोंटन ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा,
1: Ce qui a été créé ici, cela a été dit, c'est un fleuron technologique.
0: यहाँ पर जो कायम किया गया है वो टेक्नोलॉजिकल पार्क है जो पूरी तरह से मॉरिशन है और साथ में फ्रांसीसी भी। ये संबंध समान विजन पर कायम हो सकता है। मॉरिशस की ही तरह समान मूल्य भी हैं, जैसे कि ठेकेदारी कायम करने की स्वतंत्रता, भाईचारा, अधिकार, बहुपक्षीयता आदि। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि नौजवानों का भविष्य मॉरिशस में है। उन्होंने कहा,
2: L'avenir de nos jeunes ne va pas se construire pas seulement dans les secteurs traditionnels.
0: हमारे देश के नौजवानों का भविष्य केवल परंपरागत क्षेत्रों पर ही निर्भर नहीं करेगा, ये प्रयोगशालाओं और रचना केंद्रों में भी संवरेगा। साथ ही स्मार्ट उत्पादन इकाइयों, किस्म, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, निर्यात उद्योग आदि भी संबंधित हैं। हमारे नौजवान मंच मांग रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, एक ऐसा देश चाहते हैं जो अपना दरवाज़ा खोले। आवा टेक्नोपार्क इनमें से एक दरवाज़ा है। आवा टेक्नोपार्क का उद्घाटन करते हुए हम एक औद्योगिक कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, इसे ज्यादा कर रहे हैं। निवेशकों की ओर से संदेश मिला है कि मॉरिशस भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार है। हम ठेकेदारों के लिए एक संदेश भेजना चाहते हैं, सरकार अच्छी उत्पादकता वाली, बदलाव लाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करेगी। नौजवानों को भी सूचित करना चाहेंगे कि आप लोगों का भविष्य यहाँ मॉरिशस में बन सकता है, आपके देश में आधुनिकतम क्षेत्रों में। दुनिया के लिए भी ये संकेत देना चाहते हैं कि मॉरिशस न केवल वैश्वीकरण में भाग लेना चाहता है, बल्कि मॉरिशस अपनी योग्यता, स्थिरता और एक्सलेंस लाना चाहता है। टेक्नोलॉजी पार्क के पूरा हो जाने के उपरांत 4,000 नौकरियां कायम किए जाने के अलावा यहाँ इमारत में 7 मंजिलें होंगी। 42 मिलियन यूरो अर्थात करीब 2.2 बिलियन रुपए का व्यापक निवेश किया जाएगा।
3: पहली जून से कैनल प्लस के ग्राहकों के लिए TF1 ग्रुप के चैनलों का प्रसारण बंद है। उनके पैकेज के अनुसार 5 चैनल उपलब्ध नहीं है, जिससे कई ग्राहक नाराज हैं। हालांकि कैनल प्लस और TF1 ग्रुप के बीच ये विवाद नया नहीं है। वर्ष 2018 से प्रसारण अधिकारों को लेकर दोनों के बीच कई बार मतभेद हुए हैं, जिसके कारण पहले भी इन चैनलों का प्रसारण बंद हो चुका है। यासीन दैन महमूद की रिपोर्ट पर अशिता रघु का विवरण।
4: कुछ ग्राहकों को चैनलों के बंद होने की सूचना उसी दिन एक संदेश के माध्यम से मिल गई, जबकि अन्य कई ग्राहकों को ये जानकारी कुछ दिनों बाद प्राप्त हुई। अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कैनल प्लस ने कहा कि उसके विभिन्न पैकेजों में उपलब्ध अन्य चैनल भी इसी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ग्राहकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। इस पूरे विवाद की शुरुआत मार्च 2018 में हुई थी, जब पहली बार TF1 समूह के चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया था। फ्रांसीसी अखबार ले मोंद के अनुसार TF1 समूह ने अपने चैनलों का प्रसारण जारी रखने के लिए कैनल प्लस से पैसे चुकाने की मांग की थी। हालांकि TF1 ने उस समय स्पष्ट किया था कि उसने प्रसारण बंद करने की कोई मांग नहीं की, बल्कि बातचीत के लिए अपनी सहमति जताई थी। एक महीने बाद प्रसारण फिर से शुरू हुआ और दोनों पक्षों के बीच बातचीत दोबारा आरंभ हुई। साल 2022 में यही विवाद फिर सामने आया। प्रसारण कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मतभेद के कारण कैनल प्लस ने एक बार फिर TF1 समूह के चैनलों का प्रसारण निलंबित कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन लगभग 2 महीने बाद दोनों पक्षों के बीच नया समझौता हो गया और चैनलों की वापसी हुई। वहीं 2026 में दोनों समूहों के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कैनल प्लस ने 31 मार्च को ही घोषणा कर दी थी कि TF1 समूह के कई चैनल 30 जून से उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप में तो TF1 समूह के सभी चैनलों का प्रसारण कैनल प्लस पर पूरी तरह बंद कर दिया गया।
3: Schmalut. Schmalut.

समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। मंगलवार को मौशमालू निगलने के बाद 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। ये दुखद घटना एक बार फिर छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर ध्यान आकर्षित करती है। ये एक ऐसी त्रासदी है तो दम घुटने की स्थिति में तुरंत ही सही कदम उठाने को लेकर उचित जानकारी रखने के महत्व

0: भी सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को इनका सेवन बड़ों की निगरानी में ही करना चाहिए, क्योंकि इनके निगलने से दम घुटने का खतरा रहता है। क्रिस्टेल लुब्रास की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: मार्शमेलो, कैंडी, लॉलीपॉप, चॉकलेट, मूंगफली और साथ ही कुछ फल जैसे लीची और लोंगान, ये सभी चीज़ें बच्चों की पसंदीदा होती हैं, लेकिन यदि इन्हें उनकी उम्र के अनुसार न दिया जाए या बिना निगरानी के खाने दिया जाए तो ये गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।
2: Pour les petits enfants en dessous de 2 ans, quand nous commençons cette alimentation, nous devons faire bien attention. Il bat noix, c'est pistache, amande, etc. Il ne faut jamais donner aux enfants en entier. Si nous avons une bande noix, nous devons écraser, nous devons moulu en forme de poudre, nous garder dans notre alimentation.
1: 2 ans से कम उम्र वाले बच्चों को नट्स देना हो तो उसे कुचल कर पाउडर के रूप में दें। अंगूर आसानी से गले में अटक सकते हैं, मार्शमेलो आदि आसानी से गले में चिपक सकते हैं।
2: Par exemple, nous gagnons la gomme guimauve, ce qui n'arrivait malheureusement. Il y a un aliment qui est facile, il est assez gros, il peut coller dans la gorge, il va descendre facilement.
1: दम घुटने के शुरुआती लक्षणों को तुरंत पहचानना बहुत जरूरी है।
2: Si un enfant commence à étouffer n'importe quel âge, il est capable de tousser.
1: जब बच्चे का दम घुटता है तो उसे खांसी होती है, उसे खांसने देना चाहिए। यदि वो बेहोश होने लगे, रंग बदलने लगे तो तेजी से कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शुरुआती सेकंड्स में क्या किया जाए?
2: Bon, ce sont des mouvements brusques et rapides qu'il faut faire. Okay? Et si là aussi l'enfant n'arrive pas à expulser ce qui fait cause le blocage, on retourne la tête ici, on tourne là, la tête vers le bas, okay? Et là pareil, nous tapons la tête vers le bas, il nous demande un coup assez rapide sur le dos ici, okay? 5 fois. D'accord? Jusqu'à ce que l'enfant ait réussi à expulser ce qui fait bloqué. Et bien sûr, si l'enfant perd connaissance à ce moment-là, là nous faisons commencement de mesure de CPR avec l'enfant. Et on appelle les secours toujours en attendant. Donc c'est 1, 2 et on remonte. C'est plus fort à l'intérieur et en forme de J. Ok, c'est un mouvement là. Et si là aussi l'enfant n'a pas de récif, au bout de 5 fois, il n'a pas de tiré. Donc on fait l'enfant vers l'avant. On met une armée anti-homoplate, ok, en ce disque appuie-là. Et là, nous tape 5 fois rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, disposé, crash-les.
1: भोजन के दौरान बच्चों पर लगातार नजर रखना, उन्हें सही तरीके से बिठाकर खिलाना, उनकी उम्र के अनुसार खाना पीना देना दम घुटने के खतरों को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि जब किसी बच्चे का दम घुट रहा हो तो हर एक सेकंड बेहद कीमती होता है और सही समय पर उठाया गया सही कदम जान बचा सकता है।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर में प्रवाल रेखाओं को खतरा हो रहा है। मॉरिशस में शोधकर्ता प्रोफेसर रंजीत बागुली ने अपना कैरियर इन नाजुक इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और ऐसे कोरल्स यानी कि मूंगा विकसित करने में लगाया है जो भीषण गर्मी का सामना कर सके। उनके काम को जल्द ही न्यूजीलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। इससे कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राष्ट्र संघ में समंदर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पैनलिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सारा ओनो की रिपोर्ट पर याचना मिश्रा का विवरण।
1: प्रवाह रेखा दुनिया के सबसे अधिक खतरे में पड़े इकोसिस्टम है। जलवायु परिवर्तन और एल नीनो जैसी घटनाओं के कारण समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। पिछले लगभग 30 सालों से प्रोफेसर रंजीत बाकुली इस विषय पर शोध कर रहे हैं। उनके शोध ने ऐसी एक पद्धति विकसित करने में मदद की जिससे कुछ प्रवाल को अत्यधिक गर्मी के प्रति अधिक सहनशील बनाया जा सके। हमारा शोध उन कोरल्स पर है जो ऊंचे तापमान का सामना कर सकते हैं। एल नीनो घटना बढ़ रही है। कोरल्स को कई मिलियन साल लग जाते हैं विकसित होने में, जबकि तापमान में बढ़ोतरी दशकों में हो जाती है। हम जीन्स को बदलने का प्रयोग कर रहे हैं ताकि वे ऊंच तापमान का सामना कर सके। शोध को हकीकत बनने के लिए ओडिसेओ में एक पायलट परियोजना चलाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस तथा ओडिसेओ के बीच साझेदारी के तहत ओडिसेओ मरीन स्टेशन कायम किया गया है। इसे

0: बढ़ाने के लिए ज्यादा शोध और निवेश की जरूरत है। मॉरिशस के इस वैज्ञानिक के कार्यों को इसी महीने ओकलैंड न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल कोरल रीफ सिंपोजियम में विशेष सम्मान दिया जाएगा। ये सम्मेलन प्रवाल भट्टियों पर केंद्रित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक है। मैं इस सम्मेलन में 8 PhD विद्यार्थियों को ले जा रहा हूँ, जहाँ हम अपना कार्य दिखाएंगे। मैं भी नानसन FAO के खोज को प्रदर्शित करूँगा। मुझे कोरल रीफ कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कोरल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों के लिए शोधकर्ताओं को ये सम्मान दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें उस समय मिल रहा है जब कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने न्यूयॉर्क में समुद्री इकोसिस्टम पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया था।
1: मॉरिशस और सिंगापुर के बीच साझेदारी के लिए नई संभावनाएं आज पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन चंद्र रामगुलाम और सिंगापुर के उच्चायुक्त लिंग मिंग यांग के बीच रस्मी मुलाकात हुई। मुख्य रूप से आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन मजबूत करने के साथ साथ निवेश आकर्षित करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर मॉरिशस को अफ्रीका के लिए एक रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में भी देखता है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
2: मॉरिशस और सिंगापुर मजबूत साझेदारी को और भी सुदृढ़ करना चाहते हैं और नई संभावनाओं के लिए मार्ग खोलना चाहते हैं। दो छोटे द्वीपीय राष्ट्र जिनकी समान चुनौतियां हैं और जो कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम ने पोर्टलिस में सिंगापुर के उच्चायुक्त लिम मिंग यान के साथ मुलाकात की। दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत चली, खासकर मूलढांचा, सार्वजनिक सेवाओं और जल संसाधन के क्षेत्रों में। इस मुलाकात के बाद सिंगापुर के कूटनीतिज्ञ ने मॉरिशस की क्षमता पर जोर दिया और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व पर बात की, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से।
3: These are areas that potentially we could work together, whether it is in the area of utility, infrastructure, water. From the Singapore perspective, we hope that there could be a greater connectivity and links between Singapore and Mauritius. And with that, we hope that there will be more opportunities for people from Singapore as well as the rest of Asia, East Asia, to make their way to Mauritius. From Singapore, they can come to Mauritius and also moving beyond that into the rest of Africa.
2: सिंगापुर के लिए मॉरिशस इलाके में प्रवेश पाने के वास्ते एक स्ट्रेटेजिक मंच है। निर्धारित परियोजनाओं को साकार करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी।
1: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि बूस्ट टू लोकल प्रोडक्शन स्कीम अब सहकारी संगठनों के लिए उपलब्ध है। ये सहायता योजना कृषि एवं खाद्य उपकरणों की खरीद के लिए प्रति परियोजना 3 लाख रुपए तक की फंडिंग उपलब्ध कराती है। कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेल ने मॉरिशस में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए एक नई रणनीतिक योजना तैयार करने के तहत आज सुबह आयोजित एक कार्यशाला में ये घोषणा की। इसके साथ ही कोऑपरेटिव्स एक्ट में संशोधन करने की योजना है ताकि संगठनों में बेहतर कामकाज, पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर रजनी बिकर का विवरण।
2: मॉरिशस में कोऑपरेटिव्स की ओर से वार्षिक तौर पर कोई 5 बिलियन रुपए का कारोबार। इस सेक्टर को अतिरिक्त रूप से गतिशील बनाने के लिए एक नई स्ट्रैटेजिक योजना तैयार की जा रही है। इस सिलसिले में संबंधित पार्टनरों को एक कार्य बैठक में जुटाया गया। 5 Diamonds कोऑपरेटिव की नातारिया डेल्सन ने कहा, इस नई स्ट्रैटेजिक योजना में ई कॉमर्स पर विशेष ध्यान केंद्रित, ताकि मॉरिशस में कोऑपरेटिव्स को आधुनिक बनाया जाए और मध्यस्थों को हटाया जाए। मॉरिशस नेटवर्क सर्विसेज लिमिटेड के CEO रजनीश हवाबाई ने कहा,
4: d'après une recherche, on trouve au moins 30 services, 30 différents distincts services capable là. Because low even vin avec un digital product identity, capable faire la traçabilité. D'un produit depuis le commencement, depuis ses origines jusqu'à la fin. Il y a un affaire qui est très porteur, qui est très bon pour la population. Donc, il bon qui nous capable de nous donner une opportunité pour grandir et pour donner plus de valeur à ce qui se peut faire comme il faut.
2: Mantri Adil Amiamia ne samjhaya ki is strategic plan ka maksad hai arthik aur jalvayu chunautiyon ke chalte

0: सहकारिता को ज्यादा होड़पड़स्त और मजबूत बनाना। उन्होंने कहा,
1: secteur coopératif, on a l'impression que c'est une affaire du passé, mais bien au contraire, il n'est pas seulement au niveau de l'agriculture, il est au-delà de ça. Il y a le même jusqu'à financial services, par exemple, il y a une credit union, et là, nous pouvons adapter nous à un changement qui est dans la loi. Par exemple, nous pouvons inclure AML, CFT, nous pouvons définir UBO dans une credit unions. Nous pouvons venir avec une nouvelle loi pour refléter avec tout un challenge.
0: दूसरी तरफ मंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि बूस्ट लोकल प्रोडक्शन स्कीम को औपचारिक रूप से फिर से लॉन्च किया गया है। इस सहायता योजना की बदौलत खाद्य सुरक्षा मजबूत करते हुए कृषि एवं खाद्य उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग हासिल करना है।
2: मॉरिशस में बहुत कम महिलाएं मछुआरे के तौर पर काम करती हैं। ये एक मुश्किल काम है और तब और भी जटिल हो जाता है जब समंदर में काम करने के साथ साथ मां होने की जिम्मेदारी भी निभाती है। इस अवधि के दौरान उनकी मदद के लिए फिशरमैन वेलफेयर फंड आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मॉरिशस की जेल व्यवस्था का इस समय संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये ध्यान रखना है कि देश की कारीगर प्रणाली कैदियों के मानवीय व्यवहार और जेल प्रबंधन से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कितनी खड़ी उतरती है। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ प्रोफेसर कोलिन ओडोट ने देश के कई कैदखानों का दौरा किया। डिप्रेशन यानी कि तनाव, चिंता और मानसिक थकान जैसी समस्याएं आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। मॉरिशस में भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों ने एक साझा पहल शुरू की। इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय रहते सहायता उपलब्ध कराना और इस विषय पर खुलकर बात करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मॉरिशस में इस समय करीब 4,600 विदेशी छात्र पढ़ाई कर रही है। बजट 2026-2027 में छुट्टियों के दौरान उन्हें हफ्ते में 20 घंटे की जगह 30 घंटे काम करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे छात्रों को अपने खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी है वहां पर भी राहत मिलने की उम्मीद है। विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है, जोरदार ट्रॉपिकल तूफान माइसाक ने दक्षिणी चीन पर प्रहार किया। कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है और 1,30,000 से ज्यादा लोगों को खतरे वाले इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। कई जगहों पर बाढ़ भी उतर आई है और भूस्खलन की भी खबरें हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के 90 ठिकानों को निशाना बनाकर लगातार दूसरी रात के हमले किए गए हैं। ईरान ने इस बात की पुष्टि की है, उनके दक्षिणी तट पर धमाके किए गए हैं और गल्फ इलाके के उसके द्वीपों पर भी हमले हुए हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार पिछले 2 दिनों में 14 लोगों की मौत हो गई है। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। इस दौरे के अंतर्गत यूरेनियम के आयात को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कायम समझौता रिन्यू किया गया।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान और कल सुबह थोड़े से बादल घिराएंगे और हल्की सी बारिश होगी, खासकर हवाई ढलानों तथा ऊंचे इलाके पर। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा, हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। उधर तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे।

रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 5:45 बजे जबकि कल सूर्योदय 6:46 पर।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी नंबर 6 पीतो में, एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी नंबर 6 पीतो में 47 साल के 47 इयर्स ओल्ड के श्री विकास चुलन जिन्हें सब लोग मुन्ना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी मां श्रीमती स्वस्ति चुलन के घर एसएसओ स्ट्रीट ब्लॉक सी 6 पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। एवेन्यू बेटो कैंट पासी क्वाट्रो बोन में, एवेन्यू बेटो कैंट पासी क्वाट्रो बोन में 44 साल के श्री नारायण दत्त कुमार धनुकचंद, श्री नारायण दत्त कुमार धनुकचंद जिन्हें सब लोग चंदन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के घर एवेन्यू बेटो कैंट पासी क्वाट्रो बोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोरिगांव की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। काली माता रोड लाल माटी में 66 साल के श्री इंद्रदेव पुनाई जिन्हें सब लोग ईश्वर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विदुला पुनाई के घर काली माता रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी रोड लाल माटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कॉन्सिपियों पॉइंट पीमो में 52 साल की श्रीमती उमा भोला पैदाशी नाम झरी और जिन्हें सब लोग ललिता के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर कॉन्सिपियों पोतुपिमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। राहुल रिवेट स्ट्रीट मोंरोश बुबासे में 79 साल की श्रीमती वेदावादी नारायण जिन्हें सब लोग पैदाशी नाम कादेवालू और जिन्हें सब लोग पुष्पा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर राहुल रिवेट स्ट्रीट मोंरोश बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 78 सी राहुल रिवेट स्ट्रीट पोर्टलुई में 75 साल के श्री गोविंदन कन्नुसामी जिन्हें सब लोग सादा के नाम से भी जानते थे और जो डीपीएम के पूर्व कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे उन्हीं

के घर नंबर 78 सी राहुल रिवेट स्ट्रीट पोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थैंगबाव की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। रुद बॉशेरी पेटी वेजे सेंट पियर में, रुद बॉशेरी पेटी वेजे सेंट पियर में 71 साल की, 71 ईयर्स ओल्ड की, श्रीमती कमलावती लक्ष्मण, श्रीमती कमलावती लक्ष्मण, पैदाशी नाम महादुआ और जिन्हें सब लोग शोभा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके पति श्री ईश्वर दत्त लक्ष्मण के घर रुद बॉशेरी पेटी वेजे सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सौ सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। इंग्लैंड में 76 साल के, 76 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिरुद्ध कुमार चमगो जिन्हें सब लोग जोगो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे यूके समयानुसार उन्हीं के घर से उठाकर इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM अकॉर्डिंग टू यूके टाइम। नंबर 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज में 92 साल की, 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरोजिनी तिलक, पैदाशी नाम गोपाल और जिन्हें सब लोग जानी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के ढाई बजे उनके बेटे श्री देवानंद तिलक के घर नंबर 10 एवेन्यू विल्सन बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियानो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आफ्टरनून एट 2:30 PM। ब्रांच रोड लालमाटी में 67 साल की, 67 ईयर्स ओल्ड की श्री विनोद मतू जिन्हें सब लोग पाकुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनकी पत्नी श्रीमती अंजनी मतू के घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 447 रॉयल रोड वैल्यू दुप्रेत में 68 साल के, 68 ईयर्स ओल्ड के श्री मुखाराम हुकुम जिन्हें सब लोग सुनील के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार दिन के 10 बजे उन्हीं के घर नंबर 447 रॉयल रोड वैल्यू दिप्रेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही फ्रीले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 11th of July 2026 एट 10 AM। पायोंके रोड मोसलमान सेंट अंतोन गुडलेंस में 77 साल की, 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जगवंती राजकुमार पैदाशी नाम जोधवा और जिन्हें सब लोग इंद्राणी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शनिवार दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विमल राजकुमार के घर पायोंके रोड मोसलमान सेंट अंतोन गुडलेंस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन सैटरडे 11th of July एज फ्रॉम 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Came to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiri ki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

हमारा सप्रेम वंदन स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस के इस पावन भक्ति कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में और मैं हूँ देविना, आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। ईश्वर की कृपा से आपका दिन मंगलमय रहा होगा। अब आइए दिन भर की भागदौड़ तथा चिंताओं को कुछ दूर भेजते हैं और कुछ देर के लिए विराम दें तथा प्रभु के चरणों में अपने मन को अर्पित करें। भक्ति, विश्वास तथा प्रेम से भरे इन अमूल्य क्षणों में हम सब मिलकर प्रभु का स्मरण करेंगे। कहते हैं, जिस मन में श्रद्धा होती है उसी मन में शांति का वास होता है, तथा जो अपने कर्म प्रभु को समर्पित कर देता है उसके जीवन में भय तथा चिंता स्वतः दूर हो जाते हैं।

श्रोताओं, कहते हैं भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाना इसका नाम नहीं है। सच्ची भक्ति है अपने माता पिता का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, दूसरों की मदद करना, मधुर वाणी बोलना तथा हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना।

प्रिय श्रोताओं, जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है वह कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों का हाथ थामे रहते हैं। वैसे एक संत ने कहा था, जब तक मनुष्य स्वयं को अपने सबसे बड़ा समझता है तब तक वह ईश्वर से दूर रहता है। जिस दिन वह विनम्र हो जाता है उसी दिन प्रभु उसके सबसे निकट आ जाते हैं। इसीलिए विनम्रता, प्रेम तथा सेवा, यही सच्ची पूजा है। चलते हैं अगले भजन की ओर।

श्रोताओं, रेडियो मॉरिशस पर आप सुन पा रहे हैं भजते प्रभु का नाम। ईश्वर का नाम मन को निर्मल बनाता है। जब मन शांत होता है तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। दिया स्वयं जलता है तभी दूसरों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार जो स्वयं सदाचार अपनाता है वही संसार में अच्छाई फैला सकता है। आइए हम संकल्प लें कि हम सत्य बोलेंगे, प्रेम बांटेंगे तथा हर दिन कुछ समय प्रभु के नाम का स्मरण अवश्य करेंगे।

प्रिय श्रोताओ, आज के इस भक्ति संगम में साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। प्रार्थना है कि भगवान आपके जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्रदान करें, आपके परिवार में प्रेम बना रहे तथा आपके हर शुभ कार्य में ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम भज्य प्रभु का नाम में हम अनुमति चाहेंगे। शुभ रात्रि, सादर नमन, जय श्री राम।

हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक उस घोंट से ज़्यादा महबूब कोई घोंट नहीं जो बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुस्से का घोंट पी ले। जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने गुस्से को दबा लेता है वह अल्लाह ताला का महबूब बंदा बन जाता है।

सबके बस की बात नहीं।

तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस की बात नहीं। तख्ते हुकूमत को ठुकराना सबके बस

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day, all
0: night. MBC TV programs की झलकियाँ।
4: तूने भी जब जब इस धरती पर जन्म लिया, तुझे भी किसी न किसी माँ के सहारे की जरूरत पड़ी। इसीलिए शायद तूने खुद माँ को अपने से भी बड़ा दर्जा दिया।
5: तुम्ही से तुम्ही को चुरा लेंगे हम।
0: शुक्रवार 10 जुलाई को NBC4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म दुलारा, गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माई गई 1994 की मूवी दुलारा।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात बीफे के 9 तारीख है, जुलाई महीना चलता और रात के 9:10 होलबा। आप सब कोई के किरण के प्यार भरा प्रणाम नमस्ते और आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा आपके अपन मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का में। ई बखत ई प्रोग्राम आप RM3 रेडियो मनोरंजन और AM2 रेडियो मॉरिशस पर सुनत हवा और आपके फ़ोन कॉल्स आई के शुरू हो गए जैसे आपके सुनात हुई और साथ ही साथ आपके मैसेज के भी इंतज़ार रही 5251700 पर। तो देर नहीं करा, अपन फरमाइश भेजे के शुरू करा और पहला गीत आप सब कोई के नाम लीलो सरिया।

छोर के मोरिस्वा, ये गीत आप में से बहुत जना के मन पसंद गीत था और हमेशा की तरह भाई अबू ये गीत के फरमाइश करत हवन, लेकिन आज आप खास तौर पर रकीबा के नाम ये गीत करत हवा। रकीबा जे आपके भगिनी है और उनकर तबीयत ठीक नहीं बा, बहुत दिन से बीमार चलत हवन, त आपके दुआ, आप मामूजान के दुआ रकीबा संगे हमेशा रही और हमेशा बा। और हमने के भी बहुत बहुत शुभकामना, हमने के बहुत बहुत आशीर्वाद रकीबा संगे रही। और भाई अबू साथ में आयाज, अफेज़, जयार, जहीरा, रईस, काला चोटी और आपी और उनकर पत्नी के नाम ये अगला गीत करत हवन।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: इनसे मिलो प्रार्थना, ये हमारे दोस्त हैं इंस्पेक्टर सूरज, जिस पर हमने विश्वास किया और इसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया।
2: हमारी दोस्ती की कसम, मैंने तेरे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया यश।
1: दोस्ती की कसम? हाँ, अरे तुझसे अच्छे तो वो दुश्मन है।
3: तुझे खास फुर्सत में उसने बनाया।
0: रविवार 12 जुलाई को एनबीसी 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म औजार 1997 की मूवी सलमान खान और संजय कपूर पर फिल्माई गई औजार।

रात के 9:26 होल बा, देखते देखते लगभग आधा घंटा समाप्त हुई होला बा, और हमने के ये 2 घंटा के प्रोग्राम में अब खाली 1 घंटा आधा रह गया बा। और आपके जितना फ़ोन कॉल सा होता, आप सबको के फरमाइश खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो गीत चली ये एगो ललना है, जेकर भी घरे आजकल ललना गवाता, जेकर भी घरे आजकल खुशी के माहौल छेले बा, नवा मेहमान आल बा, आप सब कोई के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ऐसन ही एगो शुभकामना प्रकट करत हवन उमा जी फौजी साख से। उमा जी दादी बन गल हवन, उ भी एगो बाबा के दादी नहीं बल्कि जुड़वा लड़का के दादी, और आपके जोन पोती हवन नातिन हवन उकर कोई और नहीं बल्कि हमनी के एगो सहयोगी करिश्मा जी हवन, करिश्मा नारायण रामजतन। और आपके करिश्मा जी के बहुत बहुत बधाई, आपके और आपके पति अरुण के, आपके जोन बेटा बेटी ये दुनिया में आल हवन जा, जोन दुगो मेहमान ये आपके घर के रौनक बढ़ावत हवन जा, उ लोग के बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद दादी उमा के ओर से, हमने के ओर से, पूरा परिवार के ओर से। और करिश्मा जी के साथ साथ जितना कोई भी अभी माँ बनल हवा जा, आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना।

पीती पीती छोकरी जनाना तुरे जाला ये गीत खास तौर पर घोंगोप के सुनीता जी के ओर से उनकर बहिन विमाला के नाम जे कोंगोमा रहेलन और विमाला जी बोलत हवन कि कोंगोमा में जनाना ढेर प्लौताला जिधर देखबा त खाली जनाना लौकेला ई खातिर आप अपन बहिन खातिर ये गीत मांगत हवा जितना कोई ई गीत खुशी रहेला जा आप सब कोई के नाम पीती पीती छोकरी जनाना तुरे जाला।

आज 9 जुलाई के जितना कोई के भी जन्मदिन बा, आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और खाली आज ही नहीं, बल्कि काल जितना कोई के जन्मदिन रहा, काल जितना कोई के जन्मदिन रही, अभी से हमने के भेंट मुलाकात आवत बीफे के होई। तो अभी से लेके आवत बीफे तक जितना कोई के भी जन्मदिन बा, हमार ओर से भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से आप सब कोई के हैप्पी बर्थडे। आज जन्मदिन मनावल जाता विकेश के, गुडलैंड्स के विकेश लुकन, और विकेश के फूफू और फूफा शीला और सुरेन के ओर से, साथ में उनकर माँ गीता, उनकर पत्नी अनुष्का और उनकर भाई राकेश, उनकर बहन, तीन गो बहन हवंजा, सुधा, राखी और नित्रा, और उ लोग के तीनों जोन जीजाजी हवंजा, सूर्यदेव और प्रदीप और आनंद, आप सब कोई के ओर से विकेश के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना हमार ओर से भी। और उधर जन्मदिन मनावत हवन हांसले लेंदी के, हांसले के भी शीला के ओर से, सुरन के ओर से जन्मदिन के ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामना। और हांसले के उनकर माँ और उनकर मौसी मेगलिन और जोजियान भी जन्मदिन के

सारों आशीर्वाद, शुभकामना और प्यार बरसावत हवन जा। और हमर ओर से भी हंसले और विकेश और साथ में अभी जितना कोई आप फोन करत हवा जा, अपन रिश्तेदार लोग के जो जन्मदिन चलता उन लोग के शुभकामना प्रकट करे के, तो आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी बर्थडे।

मेरा किरण संगे। रात के 10 बजे में 10 मिनट कमती बा और अगला जन गीत चली साधु के भेस में। ई गीत सुना नोयान गेले हवन और ई गीत सुने चाहत हवन बेलिया से आत्माराम जी। आप हमेशा की तरह अपन चारों बहन के नाम ई गीत करत हवा, सुदेवी, ललिता, प्रभावती और छोटी के नाम और बेलिया के पूरा विष्णु परिवार के नाम। आत्माराम जी, आपकी तबीयत उतना ठीक नहीं बा। हमनी के प्यार, हमनी के आशीर्वाद, हमनी के प्रार्थना आप संगे हमेशा रही।

आप इशारा समझ गल हुई बा कि जन अगला गीत चली वह पियर पियर ऊँठी दिव्या रघु के आवाज में और ई गीत के फरमाइश करत हवन फ्लिक ऑफ फ्लैक से अनिता जी और आप ई गीत अपन पति राज के नाम करत हवा अपन दुगो बेटा अंतिश और अंकुश और बहू मनीषा और आशिमा साथ में आपके पोती हिमेशा और आध्या जेकर आज 14 महीना हुआ था और पोता अंश और वैसे तो जब फ़ोन कॉल्स आवेला तो या तो आप लोग हमी से बहुत खुश रहेला जा या तो आप बहुत नाराज़ रहेला जा कहे कि आपके फ़ोन कॉल नहीं लेवल जाता। ऐसे होवेला कि एक ही बार 6-7 गो फोन कॉल्स आवेला और फोन कॉल्स एगो लेब तो ओकर बाद दूसरा लेवत हव तो 7वां और 8वां फोन कटा जाला। ये बात हमनी के पड़ेला आपके बोले के और जहाँ एक तरफ शिकायत रहेला दूसरी तरफ आप लोग के प्यार भी रहेला और शिकायत अपनों से ही होवेला। इधर अनिता जी हमके सब नाम लिखावत हवन केकर केकर नाम लेवे के तो बोलन कि उनकर बहिन किरण के नाम भी किरण जे ई बखत एमबीसी में काम करत हवन तो ऐसन ऐसन जोन दिल के खुश कर देवे होला होंठ पर मुस्कुराहट आन देवे होला एक दुगो बात रहेला जोन सच में जोन समा बा उ बदल देवेला। तो चला आप सब कोई के मनपसंद गीत दिव्या रघु के आवाज़ में ये गीत संतोष महादेव भी गैले हवन आप सब कोई के नाम खास तौर पर अनिता जी के फरमाइश पर।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने भाई को मार देते हैं, तो ये तो सिर्फ मेरा दोस्त।
2: हाँ बोलना।
3: मैं पहले से शादीशुदा।
0: रविवार 12 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म एक्सक्यूज मी 2003 की ये मूवी कॉमेडी से भरपूर शर्मन जोशी और साहिल खान पर फिल्माई गई एक्सक्यूज मी।

ई बखत जे आप सफर पर निकला थोई बा त बीच सीमा में जे पुलिस ने चाहत हवा थोड़ा रोकी त सब नियम के पालन करिया, पी के नई गाड़ी चलैया और अभी

और 2 घंटा से कम थी समय में वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल शुरू हुई होला बा। फ्रांस और मारोक के मैच के इंतज़ार आप में से बहुतों के बा, और फिर भी आप लोग फ़ोन करा था वजह, बातचीत करा था वजह, अपनापन बांटा था वजह, ये खातिर बहुत बहुत शुक्रिया हमनी के साथ रहे होला बा और 45 मिनट तक।

जोन गीत अभी चलल अहो दुल्हराम संतोष महादेव के आवाज में, आप सब कोई के नाम जेकर घर में शहनाई बजता, जेकर घर में मेहंदी लगता और जहां पर भी ई सप्ताहांत शादी के तैयारी होता, आप सब कोई के ई नवा जीवन के बहुत बहुत शुभकामना। सब परिवार के बहुत बहुत साहस, बहुत बहुत प्यार और ई दिन आप सब कोई खातिर बहुत खुशियों भरा रही, बहुत ही यादगार रही, ऐसा शुभकामना हमनी के बा। और अगला जन गीत चली हम मधुबाला, हम नहीं है बल्कि बिस्वानी दीपा बुलत हवन और ई गीत के फरमाइश बहुत

0: तावेला तो आप सब कोई के नाम यग लागी तो और ख़ास तौर पर अभी वाकवा के सुदेवी जी हमेशा के तरह मैसेज भेजा था वन और आप चाहत हवा कि ये अगला गीत आपके मनपसंद गीत तो चल गल सोनानो यान की आवाज़ में, लेकिन ये जो अगला गीत चली सुदेवी जी आपके दीदी ललिता आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना और मालेगा के सब राम रतन परिवार के नाम और फिर जितना कोई भी ई बखत ये प्रोग्राम सुनत हुआ जा आप सब कोई के नाम सुदेवी के ओर से मधुबाला
1: मधुबाला हाँ।

0: अभी 11 बजे में और 20 मिनट कमती बा और आप सब कोई बहुत प्यार के साथ हमेशा की तरह इस सफर में साथ देवत हवजा बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और जैसे बोली आज 12 बजे ठीक 12 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच मैच चले होला बाद जेकर इंतज़ार खाली मॉरिशस के ही फुटबॉल प्रेमी लोग के नहीं बल्कि दुनिया भर के बा। और वर्ल्ड कप जब चलेला तो ऊ चाहे फुटबॉल प्रेमी रही या नहीं ये एगो ऐसा माहौल है ऐसा एगो जुनून छा जाला कि जे लोग आमतौर पर ये खेल नहीं देखेलन जा उस सब कोई की दिलचस्पी एकर प्रति बढ़े लगेला कहे कि यही चर्चा के विषय बनल रहेला जहाँ देखब त यही बात चलता के कैसे खेललक के नाराज होल के खुश होल के पक्का खिलाड़ी है के जादू के सच्चाई में बदले में माहिर है ये सब की जब चर्चा सुनब त खेल के प्रति अपन मने सगबा बोले एगो दिलचस्पी पैदा हो जाला। तो आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना जोन भी टीम अच्छा से खेली जीत चाहिए ओकरे होई के। और हम हजे पर आपसे आज्ञा चाहब अभी और 20 मिनट बा ये प्रोग्राम चलते रही ज़रूर सुनिया फजर के फिर मिलब जा हमारी धरोहर में और नहीं तो आवत बीफे के मिलब जा भोजपुरी तड़का में। आप सब कोई के शुभरात्रि बहुत बहुत शुभकामना नमस्ते।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: साथ किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से हम स्वागत करना चाहेंगे इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी ना जरूरी होता है कि थोड़ा सा हम रुक जाए और मुड़ कर देखें उन हसीन लम्हों की तरफ जो आज भी दिल के किसी कोने में महफूज हैं। तो आइए उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड के अमर गीतों के साथ। मैं हूँ आज गिनिशा और आपका साथ दूंगी सुनहरे पल में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।
2: क्या कहा?

हर पुराना गाना सिर्फ एक धुन नहीं होता है, वो होता है एक कहानी, एक एहसास और एक खूबसूरत याद। आज की रात हम सजाएंगे उन्हीं अनमोल नगमों के नाम जो वक्त के साथ साथ और भी हसीन हो गया है। तो दिल खोल कर बैठ जाइए मेरी जान, क्योंकि शुरू हो रहा है, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका सुनहरे पल आपकी और हमारे बीच में ऑन रेडियो मॉरिशस। कभी रेडियो के पास बैठकर पूरा परिवार गाने सुना करता था, तो कभी कैसेट रिवाइंड होती थी सिर्फ एक ही फेवरेट गाने सुनने के लिए। आज उन्हें यादों की खुशबू लेकर हम फिर से लौट आए हैं और गिनिशा बस बड़े प्यार से लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने नगमे फॉर यू माय डियर लवली लिसनर्स, जो बड़े प्यार से आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में। यादों और सुरों का ये खूबसूरत सफर जारी है आपके और हमारे बीच में।

0: पत्ता।
1: यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं। बिल्कुल जी, यादें जो होती हैं ना कभी पुरानी नहीं होती हैं, बस वक्त के साथ साथ और भी कीमती हो जाती हैं। और जब हम उन यादों के साथ जुड़ जाए तो पुराने बॉलीवुड के गीत के साथ जुड़ जाए तो हर पल सुनहरा बन जाता है। तो चलिए आज फिर से जीते हैं वो लम्हे सिर्फ सुनहरे पल के साथ।

फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहला प्यार। बिल्कुल जी, फोटो एल्बम्स, पुरानी डायरीज और वो पहले प्यार की यादें, सब कुछ याद आ जाता है जब पुराने गीत बजते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। आज फिर वही सफर हमने शुरू किया है आपके और हमारे बीच में, जो चलेगा रात के 12 बजे तक। मैं हूँ गिनिशा और आप सुन रहे हैं सुनहरे पल, और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी।

एक जमाना था जब मोहब्बत खत में लिखी जाती थी, क्या आपको याद है वो जमाना जब मोहब्बत खत में लिखी जाती थी और जज्बात गानों में महसूस किए जाते थे। आज वही एहसास लेकर हम आए हैं पुरानी फिल्मों के अमर गीत और यादों की मीठी खुशबू को लेकर, सिर्फ आके रहिए रेडियो मॉरिशस पर।

तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी।

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फ

के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आजारे आज

कुछ नहीं ठहरता ना पंचम, कभी भी कहीं भी, न तुम ठहरे न मैं ही रुकूंगा। मैं क्या बताऊं कि बहता दरिया जब आ रहा था तो जा रहा था।